सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Night Shift. All your favorite music. Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: तू मुझे चाहे न चाहे ये तेरे बस में तो है, और मैं तुझको न चाहूं ये मेरे बस में नहीं।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

लगती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
1: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: One Big Ticket brings you many chances to win
2: a guaranteed 20 million dirham grand prize,
1: 5 consolation prizes from 100,000 dirhams all the way up to 1 million dirhams,
2: 3 chances to spin for up to 1 million dirhams with Big Spin,
1: and 4 weekly electronic draw winners of 25,000 dirhams each.
2: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 7:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: got an insurance quote? Before you say yes, check insurancemarket.ae. One quick comparison could make all the difference. Call 800-ALFRED.
1: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 से मैं अवनी आपके साथ. It's 8th of September and कसम से यार, अगर आप और मैं एक ही कैटेगरी में आते हैं, मतलब आप भी मॉर्निंग पर्सन नहीं है, सुबह सुबह उठ के ना आपका भी यही हाल होता है. लगते हैं भाई गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, वो बोलते हैं क्या आप बीमार तो नहीं हो, आप ठीक हो. वेल हैविंग सेड दैट, लाल पीली तो नहीं लेकिन रेड लाइन की बात हो रही है. ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन का नाम बदल चुका है, पहले क्या था वही रहने वाली है लाइन. क्या नाम होने वाला है, टॉक अबाउट दैट अंटिल देन. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज, अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
3: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
3: अलरास बोले तो
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
3: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
5: School's starting soon and we need a car.
6: And books, uniforms, everything.
5: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
7: And what if we need it for a short while?
5: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
8: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
9: Step into a breathtaking experience where the world disappears and music transforms into a roaring universe around you. Zikr presents Akansha Grover Ki Mehfil, a historic takeover inside Toda's monumental 360-degree digital projection theater on 13th of September. This is not just a performance, it's a pure sensory explosion. To witness the magic, book your tickets now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
5: Dabur Pudinhara, just one tiny pearl packed with Ayurvedic mint oils, gives your stomach instant soothing relief.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 40 degrees out there, but Dubai will see a high of 42 degrees and a low of 33 degrees. The humidity levels are at 44% right now.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सब सॉन्ग दर दे दी।
1: ब्रेकअप फिलहाल हो चुका है ऑन पैसिव और रेड लाइन के बीच में।
2: द बिग ब्रेकफास्ट ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: Big 106.2 से मैं अवनी आपके साथ। It's 8th of September and On Passive का नाम चेंज हुआ है, इसीलिए अब On Passive बुलाया नहीं जाएगा उसको। On Passive मेट्रो स्टेशन का नाम जो है अब नया हो चुका है Garmin मेट्रो स्टेशन। दुबई RTA has signed a 10-year naming rights agreement with Garmin, the global fitness and GPS technology brand, and स्टेशन जो है दुबई मेट्रो नेटवर्क पर ही होगा। रेड लाइन ही होगी जो पहले होती थी On Passive की। उससे पहले बाई द वे इसका नाम अल सफा था, अल सफा से On Passive हुआ, On Passive से अब Garmin हो रहा है, हो चुका है। लेकिन ये 10 ईयर तक तो गार्मिन ही रहने वाला है। मैं सोच रही इतने नाम बदले जा ही रहे हैं अगर, तो मैं पीछे क्यों हटूं? क्या कहते हो, विच वन इज बेटर, लैला और अवनी? टेल मी 800-1062 पे कॉल करके। एंड याद से गलती से भी ना ऐसे On Passive का इंतजार करते करते गार्मिन मेट्रो स्टेशन पास मत कर देना। कमिंग दिस सॉन्ग आफ्टर दिस वन, अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।
2: बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।

0: गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: Jesus on to see a track, one of my favorite singers, Hasa Hasa song Ganam.
1: The Big Breakfast on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. इट्स 8th of September एंड अगर आप भूल गए तो मैं याद दिला दूँ. इट्स जस्ट ट्यूजडे. आई मीन पहला हफ्ता निकला है अभी. अब बच्चों ने जब स्कूल वापस जाना शुरू किया है, लेकिन यार पहले हफ्ते ना बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट वीक शुरू होता है ऐसे रियलाइजेशन होती है, ओह अच्छा ये रोज करना है. This time, अब आप स्कूल रेडी हो सकते हो सेल्फ ड्राइव के साथ फॉर अ स्मूथ राइड टुवर्ड्स योर स्कूल. रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 दिरहम्स पर मंथ, द फ्लैट रेट फॉर द ईयर, जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न्स. सो नाउ गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव एंड कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: नाम है Sid on the Big Breakfast, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
3: Anyone can sell insurance when everything's fine. What matters is who shows up when it isn't. InsuranceMarket.ae. Here when it matters. Call 800 Alfred. InsuranceMarket.ae.
4: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
0: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 8:07। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Already bought insurance somewhere else? Maybe don't check insurancemarket.ae now. You might wish you had checked before. Next time, compare first. 800 Alfred.
1: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: मेरा तो यार हर दिन का कमबैक होता है. हर दिन मैं काम पर आ रही हूँ, अच्छे से काम कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, सर्वाइव कर रही हूँ. दैट्स एक्चुअली माय कमबैक. लेकिन द रियल कमबैक, जब लोग जेन्युइनली बड़े वाला कमबैक करते हैं, आर यू गोना ट्रोल देम? एंड मैं बात कर रही हूँ बिपाशा बासु के बारे में. शी इज गोना बी बैक ऑन स्क्रीन्स आफ्टर सेवरल इयर्स. लेकिन तब भी मूवीज में वापस आने की जब बात हुई, नेटिजंस आर ट्रोलिंग हर. लेकिन यू नो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिपाशा बासु इज द ओनली इंडियन एक्ट्रेस जिनके नाम पर भी गाना है भाई.
3: आज मैं सिखा दूं प्यार की भाषा.
2: बात इस कमबैक से अगर लोगों को बदहजमी हो रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती. लेकिन अगर कुछ, अगर आपको जेन्युइनली बदहजमी हो रही है, इनडाइजेशन हो रही है, आई हैव गॉट अ वे फॉर यू. गेट इफेक्टिव रिलीफ नेचुरली विद डाबर पुदीन हरा. जस्ट वन टाइनी पर्ल पैक्ड विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स गिव्स योर स्टमक इंस्टेंट सूदिंग रिलीफ. इट्स योर पॉकेट साइज्ड कंपेनियन फॉर क्विक नेचुरल रिलीफ एनी टाइम एनी वेयर. सो नाउ यू कैन स्टे इनडाइजेशन फ्री द नेचुरल वे विद डाबर पुदीन हरा. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट कंजम्पशन से पहले. And it's also available on Noon Minutes. Talking about Bibhasha Basu, वो कौन सी फिल्म में आ रहे हैं, कौन सी फिल्म करने वाले हैं, what the concept is, रोल क्या है, सब बताती हूँ in just a bit. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: हैप्पी आवर कमिंग अप। है जवानी तो इश्क होना है फ्रॉम द फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, वरुण धवन, अनु मलिक, जावेद द मोशन एंड शंकर महादेवन। कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2,
1: बिग 106.2, फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
2: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
3: स्कूल्स स्टार्टिंग सून एंड वी नीड अ कार
4: एंड बुक्स, यूनिफॉर्म्स, एवरीथिंग।
3: डोंट वरी, आई फाउंड द बेस्ट बैक टू स्कूल रेंट अ कार ऑफर ऑन selfdrive.ae। सेल्फ ड्राइव कार्स रेंटिंग फ्रॉम जस्ट 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back to school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
6: Car covered, health covered, home, life, travels or business covered. Over 30,000 Google reviews. One name covers it all. 800 Alfred. Insurance Market. Dot A.
7: Hey, jaldi hata tera khatana. Jal hata. Arey jaldi hata yaar chinda.
8: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
9: दुबई शारजा कॉरिडोर इज ऑफ कोर्स द हेवीएस्ट कंजेशन देयर। स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा आपको E311 पर। अगर आप सेंट्रल दुबई की तरफ आ रहे हैं, शेख जायद रोड अराउंड जमील पार्क पर भी आपको डिलेज मिलेंगे। वेल देयर ट्रैफिक ऑन पार्ट्स ऑफ E11 थ्रू जुमेरा बिजनेस बे एंड दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट इज वेल। अगर आप शारजा या फिर अजमान से आ रहे हो, E611 वुड बी अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू E311। कहीं और फंसे हो तो बताओ मुझे 800-1062 पर।
8: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: The Big Breakfast on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अपनी आपके साथ and 2012 में ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी, रिलीज हुई थी. आई वाज इन सेवेंथ ग्रेड. आई एम टेलिंग यू दिस फिल्म वाज अ बेंचमार्क फॉर माय टीनेज. फिर 2019 में पार्ट टू आया है ना, सीक्वल नहीं था, बस नया पार्ट था. बट नाउ द थर्ड पार्ट इज नॉट गोना बी अ मूवी. शनाया कपूर होंगी इसमें, करण जौहर का ही प्रोडक्शन है, लेकिन ये मूवी नहीं है. वेब सीरीज पगलू प्लीज लाइन अप. वेब सीरीज मिल जाए, हम बिंज वॉच के लिए तैयार बैठे होते हैं. आई मीन मैं बता रही हूँ, द फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर सॉन्ग एल्बम ऑफ द पार्ट वन, दैट वॉज टॉप नॉच लेवल. व्हाट यू थिंक अबाउट इट? द स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 वेब सीरीज, बताओ ना, बताओ. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 9:06।
2: Bollywood.

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलरस से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलरस कहाँ है अलरस?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलरस है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलरस।
2: स्कूल्स स्टार्टिंग सून एंड वी नीड अ कार
3: एंड बुक्स, यूनिफॉर्म्स, एवरीथिंग।
2: डोंट वरी, आई फाउंड द बेस्ट बैक टू स्कूल रेंट अ कार ऑफर ऑन selfdrive.ae। सेल्फ ड्राइव कार्स रेंटिंग फ्रॉम जस्ट 1099 per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back to school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
5: The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2.
6: Recalculating route to Sharaf DG for back to school shopping.
7: Parents, you heard that right. Win up to 5,000 dirhams back on laptops and tablets. Get gifts worth 500 dirhams and enjoy an extra 5% student and teacher discount. And that's not all. Save up to 200 dirhams with DIB, Al Hilal Bank and HSBC. Power up for AI amplified learning. Shop in store or online. DNC Supply.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
5: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरस, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
10: इट्स 36 डिग्रीज सेल्सियस आउट देयर विद 39% ह्यूमिडिटी। इज गोना बी हाई ऑफ 42 एंड अ लो ऑफ 33।
5: अलरस ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by insurancemarket.in.

0: Call 800-ALFRED. Buying insurance is easy. It's when something goes wrong that your choice really matters. That's when insurancemarket.ae delivers.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड जितना मर्जी मैं सोशल मीडिया गर्ल बन लूँ, लेकिन जब भी मुझे कोई फोटो स्टोरी भी डालनी होती है ना, एक घंटा मुझे एक्स्ट्रा लगता है. यार मैं कौन सा गाना लगाऊँ, कौन सा गाना लगा सकती हूँ. तब भी जब आप वेकेशन पर जाओगे तब भी आपको ये दिक्कत आने वाली है. एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम वी आर गोना प्ले विद यू बॉलीवुड बीट्स टू जर्मनी. इस बार आपको मैसेज करना है 0543091062 पर. टाइप करके बिग चेक इन स्पेस योर नेम टू रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द बिग चेक इन टू जर्मनी, जहां पर आप चल सकते हो हमारे साथ जर्मनी. लेकिन वहां जाके वेकेशन पर फोटो खींचोगे, स्टोरी लगाओगे, है ना, कौन सा गाना यूज करोगे, वो हम प्रेप करने के लिए बॉलीवुड बीट्स टू जर्मनी आपके साथ खेलेंगे. टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062. आई विल कॉल यू एंड विल प्ले बॉलीवुड बीट्स टू जर्मनी.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: High speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany, only on Big 106.2.
2: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
3: Step into a breathtaking experience where the world disappears and music transforms into a roaring universe around you. Zikr presents Akansha Grover Ki Mehfil, a historic takeover inside Toda's monumental 360-degree digital projection theatre on 13th of September. This is not just a performance, it's a pure sensory explosion. To witness the magic, book your tickets now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
4: Kar hi nahi sakte. चाहो भी तो नहीं कर सकते।
5: हाय समीरा।
6: हाय अवनी, हाउ आर यू?
5: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और कितनी बार मैसेज किया यार आपने?
6: बस मैं यही काम कर रही थी।
5: बहुत बढ़िया काम पकड़ा है। ओके, वी गोना प्ले बॉलीवुड बीट्स टू जर्मनी विद यू। दिस इज योर चांस, बिग चेक इन टू जर्मनी। क्या आप एक्साइटेड हो?
6: सुपर सुपर, इसीलिए तो सारा दिल से लगी हुई थी।
5: लेट्स सी अगर आप ये सॉन्ग गेस कर पाते हो। दिस इज अ वेरी फेमस सॉन्ग, आई एम श्योर यू नो इट। Any guesses?
6: Ranji Mahi Mahi Wai.
5: Yeah, what's the song name?
6: Majahi
5: Majahi. Congratulations, Samira.
6: Thank you so much. Thank you.
5: अभी आपका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है, आपका नाम जो है ड्रॉ में जाएगा, एंड देन लेट्स सी अगर आप जर्मनी जाते हैं हमारे साथ या नहीं। बट कांग्रेचुलेशंस।
6: थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, एंड थैंक यू फॉर पुटिंग मी ऑन एयर। थैंक यू।
0: चीयर योर मिडडे मूड, मंडे टू फ्राइडे 1 टू 5 पीएम, द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
5: Heavy congestion on Dubai Sharjah corridor, particularly around E311 Sheikh Mohammed bin Zayed Road. And then there's an incident reported affecting traffic around Al Ittihad Street near Al Mamzar. If you're heading further into Dubai, Sheikh Zayed Road near Zabil Park, par bhi aapko delays milenge. There's one more incident on Sheikh Mohammed bin Zayed Road around Rasulpur Industrial Area. One more accident has been reported on Algaziz Industrial Area. Drive safe, and kahin aur traffic milta hai to do let me know. 800-1062 pe call karke.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099.

0: एरिया, ड्राइव सेफ एंड कहीं और ट्रैफिक मिलता है तो डू लेट मी नो 800-106-2 पे कॉल करके.
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैंने आज कॉल किया है माय नेम इज खान को. हाय.
2: हेलो. हेलो.
1: हाय मिस्टर खान. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप?
2: मॉर्निंग ठीक कर रहे हो यकीनन. सो योर ब्लेस्ड.
1: थैंक यू सो मच. आई विल टेक द कॉम्प्लीमेंट. ओके थोड़ी और मॉर्निंग को हम हाइप अप करते हैं. आई एम गोना गिव यू अ म्यूजिक. सिर्फ स्टार्टिंग का म्यूजिक दूंगी मैं आपको एंड आपको गेस करना है वो सॉन्ग का नाम क्या है.
2: Okay.
1: And before you do that, are you ready for Germany?
2: No, I mean, I was born ready probably. Germany, who would say no?
1: So you were born ready, you're saying. So आपको जर्मनी के सारे सवाल भी आते हैं. आपने पढ़ाई रिसर्च कर ली अपनी साथ?
2: इतना नहीं. अब मैं आप मुझे जनरल नॉलेज का कोई दे दोगे तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा. बॉलीवुड का कर पाऊँ.
1: जनरल नॉलेज जनरल ही है वो भी. Okay, let's see.
2: मिस्टर
1: खान जल्दी करो पनवेल निकलना है.
2: इस
1: गाने पे.
2: No, I'll do it in Germany if you want me, if you take me along.
1: That's the spirit. चल रहे हैं अभी आपका नाम आज रजिस्टर हो गया है. लेट्स सी आप ड्रॉ में जीतते हो या नहीं जीतते हो. थैंक यू सो मच मिस्टर खान.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: अगर आपको चलना है हमारे साथ जर्मनी बिग चेक इन टू जर्मनी में रजिस्टर करना है अपना नाम ऑल यू हैव टू डू इज टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062.
0: बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.

0: Breakfast on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Breakfast and अबू धाबी ने लॉन्च किया है गर्ल्स फर्स्ट डिजिटल स्किल्स कार्ड. बेसिकली ये एक डिजिटल प्रूफ होगा कि आप प्रोफेशनल हैं, यू हैव वेरीफाइड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस. दिस ईच कार्ड कम्स विद अ QR कोड. एम्प्लॉयर जो है सिंपली स्कैन कर सकता है, वो कोड चेक कर सकता है इफ योर वर्कर्स सर्टिफिकेशन इज जेन्युइन वैलिड या फिर नहीं. इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन पेपर डॉक्यूमेंट्स पूरे मैनुअल चेक्स करो. सो बेसिकली अगर आपको एक इलेक्ट्रिशियन हायर करना है, ठीक है, दैट इलेक्ट्रिशियन विल शो देयर डिजिटल स्किल कार्ड. एम्प्लॉयर वो QR कोड स्कैन करेगा, सिस्टम वो वेरीफाई करेगा. And then the employee can confirm कि credentials genuine हैं या नहीं है. Less paperwork, much faster verification. But अब बात आती है skill पर. Skill verify तो हो जाएंगे, लेकिन पहले skill चाहिए. I got you there. Song coming your way after this one. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 10:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2. The Beat of Bollywood.
1: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED-247.
2: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
5: It's 37 degrees out there, but actually feels like 45. But the good part is humidity jo hai comparatively is less. It's 36%.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: A bump, a break-in, a hospital bill. Suddenly, insurance really matters. That's when insurancemarket.ae delivers. For claims or cover, call 800-ALFRED.
1: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग ये पढ़ने के बाद कि जो मेरी दादी माँ है ना ग्रैंड मदर शी इज अराउंड 80 नाउ और मानोगे आप यार वो आज तक अपने सूट खुद सीते हैं अपने लिए. वो बाहर से टेलर से नहीं करवाने जाते, बुटीक पे नहीं जाते हैं कि मैं यू नो बनवाऊँ सूट, वो खुद बनाते हैं. शी इज सो एफिशिएंट इन दैट एंड देन देयर आर ओल्ड पीपल रिटायरीज जो कि उन्होंने अपने लाइफ में इतना काम किया है एंड वी नीड दैट एक्सपीरियंस. किसी भी हालत में हम काम तो कर सकते हैं, काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस उसको नहीं लेना भैया हल्के में आपको कभी भी. एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो खाने के जो सबसे एक्सपीरियंस लोग हैं पावर जॉन्स की मैं बात कर रही हूँ. दे हैव लॉन्च इट्स न्यू अवन टोस्टेड सैंडविचेस इन यूएई, फेमस फॉर द पिज्जाज. लेकिन आई लव सैंडविचेस एंड दिस वन इज क्राफ्टेड ऑन अ सार्डो स्टाइल चबाता ब्रेड विद एन एक्सेप्शनली क्रंची बाइट दैट्स मेड टू बी हर्ड. दे हैव गॉट 6 बोल्ड वराइटीज इन दिस. मैं ट्राई कर चुकी हूँ, डेफिनेटली अ गुड रिकमेंडेशन. ट्राई द न्यू पापा जॉन्स सैंडविचेस. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप टुडे. बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा, पापा जॉन्स. एंड बात करें जो नया रूल आया है, नया प्रोग्राम आया है शारजा में अबाउट द पार्ट टाइम थिंग फॉर रिटायरीज. बात करेंगे इस बारे में. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड व्हाट अ ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव, ग्रेट प्रोग्राम शारजा ने इंट्रोड्यूस किया है. अ न्यू पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजंस, रिटायरीज एंड देयर स्पाउसेस, एमिंग के ओल्डर रेजिडेंट्स को वापस से वर्क फोर्स में लिया जाए. द प्रोग्राम विल अलाउ एलिजिबल पीपल टू वर्क जस्ट फॉर 1 or 2 hours a day और 3 नॉन कंजेकटिव डेज ऑफ द वीक डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी. और ये जॉब जो है डिजाइन की गई है टू बी लाइट एंड मैनेजेबल. फॉर एग्जाम्पल एक रोल जो मैंशन किया गया है, हेल्पिंग एट अ शारजा म्यूजियम बाय चेकिंग विजिटर्स टिकट्स, एंड वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा सकता है. The plan is to employ 1000 senior citizens. लेकिन आइडिया ये नहीं है कि आपको इनकम चाहिए इसीलिए कर रहे हैं. Nope. Sharjah says it's also about reducing the isolation, keeping seniors socially active and allowing them to continue contributing to the community, which is a great initiative. And I really think so. We really need people around us जो कि काफी experienced है life में. That's what I'm talking about. Keep it locked to Big 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Breakfast on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड द सॉन्ग ऑफ द आवर वाज ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae विद 30,000 गूगल रिव्यूज विद अ 4.8 स्टार रेटिंग बिल्ट इन UAE ट्रस्टेड अक्रॉस UAE एवरी रिव्यू इज अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट एवरी पॉलिसी इज अ प्रॉमिस केप्ट insurancemarket.ae फिलहाल हो रहा है मेरे जाने का टाइम पर आपको पता है यार मैं हमेशा रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस अ फॉलो ऑन 106.2 बिग एफएम इंस्टा हैंडल मुझे भी मैसेज कर सकते हो फॉलो कर सकते हो अवनी आर के पेज पर AVNI Y AAA R and milti hu abhi 1 baje the big mix par until then keep it locked with my favorite song
2: ji karda bhai ji karda tenu kol bitha ma ji karda
1: I just love that pink skirt on Katrina Kaif in this song is from singers king coming up your way only on big 106.2 keep it locked

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: डाइजेस्टन कूल टिप्स विद डाबर पुदीन हरा।
3: एसी से रूम कूल होता है, डाबर पुदीन हरा से टमी फील्स कूल। वन टाइनी पर्ल विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स हेल्प सूद इनडाइजेशन डिस्कम्फर्ट नेचुरली।
2: डाबर पुदीन हरा, स्टे इनडाइजेशन फ्री द नेचुरल वे। अवेलेबल ऑन नून मिनट्स। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन।
1: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हज़ार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही, यही 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5pm. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
1: Kar hi nahi sakte. चाहो भी तो नहीं कर सकते।
2: हाय समीरा।
3: हाय अवनी, हाउ आर यू?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और कितनी बार मैसेज किया यार आपने?
3: बस मैं यही काम कर रही थी।
2: बहुत बढ़िया काम पकड़ा है। ओके, वी गोना प्ले बॉलीवुड बीट्स टू जर्मनी विद यू। दिस इज योर चांस, बिग चेक इन टू जर्मनी। क्या आप एक्साइटेड हो?
3: सुपर सुपर, इसीलिए तो सारा दिन से लगी हुई थी।
2: लेट्स सी अगर आप ये सॉन्ग गेस कर पाते हो। दिस इज अ वेरी फेमस सॉन्ग, आई एम श्योर यू नो इट। Let me hear you shout. Any guesses?
3: Ranjhe mahi mahi wai.
2: Yeah, what's the song name?
3: Majjahi
2: majjahi. Hey, congratulations Samira.
3: Thank you so much. Thank you.
2: अभी आपका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है, आपका नाम जो है ड्रॉ में जाएगा, एंड देन लेट्स सी अगर आप जर्मनी जाते हैं हमारे साथ या नहीं। बट कांग्रेचुलेशंस।
3: थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, एंड थैंक यू फॉर पुटिंग मी ऑन एयर। थैंक यू।
0: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 टू 5 पीएम द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: इट्स पास्ट वन। लोगों के लंच खुलना शुरू हो गए हैं। लेट मी चेक माइन एज वेल। कीप इट लॉक टू बिग 106.2।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 92.2 The Beat of Bollywood.
1: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. insurancemarket.ae.
2: School's starting soon and we need a car.
3: And books, uniforms, everything.
2: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
5: Digestion cool tips with Dabur Pudinhara.
6: AC se room cool hota hai. Dabur Pudinhara se tummy feels cool. One tiny pearl with Ayurvedic mint oils helps soothe indigestion discomfort naturally.
5: Dabur Pudinhara. Stay indigestion-free the natural way. Available on Noon Minutes. Consult your doctor or pharmacist before consumption.
0: Big 106.2. Big 106.2. The Beat of Bollywood.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
9: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
10: इट्स 39 डिग्रीज आउट देयर बट क्लियरली फील्स लाइक 50. ह्यूमिडिटी लेवल्स आर ऑन 38%.
9: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट alras.me. बिग 106.2. बिग. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: You insure your car. What about the person driving it? Protect what matters most with health insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ और Instagram खोलते ही ना आप वापस 80s में पहुंच जा रहे हो आजकल. Why is that so? Because everyone's bringing back the 80s nostalgia with this AI trend जो कि आपकी फोटोज को रेट्रो स्टाइल में कन्वर्ट कर देता है. You have to send your photo, write this prompt और उसके बाद वो आपको 80s की ड्रेसिंग करवा के लाइफ स्टाइल बना के आपको वो पूरी की पूरी पिक्चर एज इट इज भेज देता है. एंड द मेक ओवर इज एब्सोल्यूटली गिविंग ऑनेस्टली. कुछ कुछ बहुत फनी है बिकॉज देयर इज ऑल्सो AI फील्स. कम ऑन यार, कम ऑन. लेकिन एक सवाल वहीं पर रहता है, वहीं टिका हुआ है, व्हाई?
3: कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू.
2: कुछ तो करना है यार, कुछ तो करना है. वेल, इफ यू वांट दिस प्रॉम्प्ट, गिव मी अ व्हाट्सएप पिंग ऑन 0543091062 एंड मैं भी जरा अपना बनाकर आती हूँ 80s स्टाइल की अवनी. अंटिल देन, कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: پیدا تو میں بھی شریف ہوا تھا اور شرافت سے اپنی کبھی نہیں بنا. ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم سے بڑا شیطان کون پیدا ہو گیا.
1: Big 106.2 The Beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Listen to her every day.
4: Mugembo! Khush hua!
5: There's one thing that I absolutely love and that is winters. Oof, oof, maza aane wala hai. Hi Gaurav. कहाँ बेसमेंट में बैठ के बात कर रहे हो?
6: नहीं बस ये बिल्डिंग के कॉरिडोर में आ गया था.
5: तो आप ऑफिस में अभी भी तो घर वालों से छुप छुपा के बात कर रहे हो?
6: जी किसी को बताऊंगा नहीं, अकेले अकेले जाऊंगा.
5: बहुत बढ़िया, वैसे भी अकेले ही ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा मोहल्ला जाएगा साथ. बट फिलहाल आपकी डीपी बड़ी अच्छी है, देख के लगता है यू आर इनटू रियल एस्टेट.
6: Yes, right.
5: तो आपको हमारी क्या जरूरत है यार, रियल एस्टेट वालों को तो इतना सॉलिड कमीशन मिलता है, वो तो हफ्ते में एक बार जर्मनी जा सकते हैं. मैंने सुना है गए हो पहले आप कभी जर्मनी?
6: नहीं जर्मनी नहीं, बट फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड एंड वन मोर थिंग इटली.
5: ये देखो मैं कह रही हूँ रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है फिलहाल. तो आपका गाना है कौन सा गाना है गौरव?
6: वो हसीना वो हिलम पड़ी, कर गई जैसी जादू घड़ी, नींद इन आंखों से छीन ली, हाँ दिल में बेचैनियां हैं भरी.
5: ना ना ना ना ना ना ना ना ना, हम तुम्हें ले जाएंगे होपफुली जर्मनी को.
6: थैंक यू थैंक यू.
5: शॉर्टलिस्ट हो गए गौरव, कांग्रेचुलेशन.
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: शारजा टुवर्ड्स दुबई, वहाँ पे आपको कंजेशन मिल जाएगा ऑन E11 अराउंड अल खान एंड अल ममजार बीच पार्क. मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर D62 बिटवीन दुबई फेस्टिवल सिटी एंड E44 रसल कोर इंटरचेंज, यहाँ पर भी आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा, स्पेशली इफ यू टुवर्ड्स इफ यू हेडिंग टुवर्ड्स मिर्दिफ एंड अलवरका. ट्रैफिक इज बिल्डिंग अराउंड अलबर्शा एंड अलकूज मॉल ऑफ एमिरेट्स इंटरचेंज एंड D72 पर भी आपको ट्रैफिक मिल जाएगा. ड्राइवर्स अराउंड GVC एंड मोटर सिटी, वहाँ पर भी आप डिलेज एक्सपेक्ट करके चलो. अंटिल देन कीप इट लॉक टू बिग 106.2.
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
8: ek aisi ladki jise dekhte hi dil ki har arzu, sare khwab, sare rang zinda ho jaye.
1: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस न्यूज़ इज़ सो हैप्पी फॉर मी. वाई? क्योंकि मुझसे बड़ी घुमक्कड़ मैंने आज तक नहीं देखी. आई जस्ट लव गोइंग आउट एंड इसलिए ये सब चीज़ें जो है दुबई के बेस्ट स्पॉट्स रीओपन हो रहे हैं. यू टेल मी कि इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है. बेस्ट आउटडोर स्पॉट्स, ग्लोबल विलेज एक्सपेक्टेड है अक्टूबर में आ जाएगा वापस. दुबई सफारी पार्क भी अक्टूबर में खुल जाएगा. दुबई मिरेकल गार्डन भी अक्टूबर में खुल सकता है. दुबई क्रोकोडाइल पार्क सेप्टेम्बर 15th को एक्सपेक्टेड है कि खुल जाएगा. वेल, दीज आर द प्लेसेस एक्चुअली जो मैंने नहीं घूमी थी. जब मैं आई थी तब बंद थी एंड सिंस आई एम अ न्यू कमर हियर. अभी भी आप बताओ मुझे कि और ऐसे कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ पे मुझे जाना चाहिए. 0543091062 इज द व्हाट्सएप नंबर. डू लेट मी नो देयर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड ओनली ऑन बिग 106.2.

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: दिल चाहता
1: हर बच्चे का दिल यही चाहता है, उनका भी मन ना यारों में ही लगता है, फ्रेंड्स में ही रहता है, लेकिन तब भी सुबह सुबह उठ के जब स्कूल जाना होता है ना, तब होता है कि छोड़ो यार छुट्टी कर लेते हैं।
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड अगर आपको अपने स्कूल तक की राइड स्मूथ करनी है, गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव, रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 दिरहम पर मंथ, फ्लैट रेट फॉर द ईयर, जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न। सो बेसिकली अब आपकी जो ये एक्सक्यूजेज है ना कि ना नहीं जाना है,
3: मेरे दिल नाले लारे नी तू लाउन वाली है, दिल तेरा जदों टूटूगा तब
1: कमिंग अप नेक्स्ट एपिटलो का ट्रैक संकरा में एक्सक्यूजेस। गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव एंड कीप इट लॉक टू बिग 106.2।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: insurance gave you more than insurance? Buy anything from insurancemarket.ae and get My Alfred Premium free for 1 year. Call 800-ALFRED.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड हैव यू सीन दोज मीम्स ऑन इंस्टाग्राम के भाई उठो अनारकली पैसे नहीं कमाओगी तो ट्रिप पर कैसे जाओगी बट फॉर दिस वन दिस इज एन ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: बिग चेक इन टू जर्मनी जाने के लिए अगर आपको अपना नाम रजिस्टर करना है ऑल यू हैव टू डू इज टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062 व्हाट्सएप नंबर पर. मैं करूंगी आपको कॉल. वी गोना प्ले बॉलीवुड बीच टू जर्मनी एंड उसके बाद देखते हैं कि आज का नाम किसका शॉर्टलिस्ट होता है, किसका नाम जाता है आगे ड्रॉ के लिए. बट टिल देन दिस ट्रैवल ट्रैक
3: कुछ तो है तुझसे राबता.
2: कमिंग अप योर वे है क्या है आपका जर्मनी से राबता है मुझे लग रहा है. मैसेज करना है व्हाट्सएप पर 0543091062.
1: पार्टिसिपेट इन द बिग चेक इन कॉन्टेस्ट एंड गेट अ चांस टू विन अ ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यूब प्रॉपर्टीज. टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स. एसोसिएट स्पॉन्सर्स फोर्ड एंड शराफ डीजी. ट्रैवल पार्टनर एएफसी हॉलीडेज. एक्सक्लूसिवली ऑन बिग 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्प राज, अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
2: Autobahn, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor Daniel Properties. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany, only on Big 106.2.
3: School's starting soon and we need a car.
4: And books, uniforms, everything.
3: Don't worry, I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
2: The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae.
6: InsuranceMarket.ae.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: इट्स 39 डिग्री सेल्सियस आउट देयर विद 39% ह्यूमिडिटी, ट्विनिंग कर रहे हैं ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, लेकिन आप स्टे हाइड्रेटेड बिकॉज इट्स एक्चुअली फील्स लाइक 50 डिग्रीज।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। गॉट अ सॉन्ग इन योर हेड राइट नाउ? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 054-309-1062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
10: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
2: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Check-In to Germany and आज मैंने कॉल किया है कोमल को. Hi कोमल.
2: Hi Avni, how are you?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं.
1: मैं ठीक हूँ, पर आप इतने लो क्यों साउंड कर रहे हो? आप कहाँ पर हो अभी?
2: अभी ऑफिस में.
1: ऑफिस वालों को अभी नहीं पता लगना चाहिए कि मैं वेकेशन पे जाने की तैयारी कर रही हूँ, है ना?
2: Of course, it's confidential, right?
1: Very, of course, it's on air, it's very confidential. अच्छा, जर्मनी की तैयारी क्या करी है कोमल आपने?
2: तैयारी, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन यू नो, आई मीन वंस आई एम फाइनलाइज तो जस्ट बैग लेके निकलना है, दैट्स इट.
1: तो बैग्स पैक्ड हैं आपके? ओओटीडी रेडी है?
2: एवरीथिंग.
1: ओके ओके, मैं आपको सिर्फ म्यूजिक सुनाऊंगी गाने का, आपको गाना गेस करना है. ओके
2: ओके,
1: कर सकते हो? सुनते हो गाने?
2: सारा दिन यही करते रहते हैं, ऑफिस से जाते आते ये सारे गाने ही सुनते रहते हैं.
1: let's see कितना कलेक्ट हुआ है जनरल नॉलेज आपका.
2: ओके, फिंगर्स क्रॉस.

0: अभी तक तो आ जाना चाहिए था।
1: नशे से चढ़ गई, नशे से चढ़ गई। I'm already dancing by the way, हाँ?
0: मुझे लगता है दिस इज यू जब आप जर्मनी जाओगे, नहीं?
1: Yes.
0: थैंक यू सो मच कोमल, आपका नाम आज के लिए रजिस्टर हो जाता है एंड लेट्स सी आप नेक्स्ट ड्रॉ में जो निकलता है जर्मनी जाओगे या नहीं। कंग्रेचुलेशंस।
1: थैंक यू।

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आप जैसा कोई. एग्जैक्टली exactly, मुझे ऐसा ही एक बिजनेस आइडिया चाहिए था जो मुझे मिल चुका है. अब क्या मैं 2-3 घर बना पाऊंगी?
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड एक नया बिजनेस आइडिया मेरे पास आया है एंड इट्स अ प्रूवन वन. सक्सेस रेट काफी ज्यादा है बिकॉज मैं पढ़ रही हूँ देयर इज दिस वुमन जिन्होंने ये बिजनेस आइडिया इम्प्लीमेंट करके 2 घर बना लिए हैं. सो आई थिंक सो इट्स गुड टू गो.
2: तेरी कुड़मा एक दिन नागर.
0: Not that. It's actually जब आपके यार दोस्त आपसे कोई सीक्रेट शेयर करता है और बड़े ही ट्रस्ट के साथ बोलता है, अरे यार ट्रस्ट मी यार, कहीं की बात कहीं नहीं करूंगा. वो कहाँ तक और कब तक छिपता है वो तो आप और मैं जानते ही हैं. What's the business idea? Gonna talk about that in a bit. Until then, keep it locked to Big 106.2.

Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 3:06।
1: Bollywood.

0: है मुझको।
1: मुझे भी एक बात का वैसे डर रहता है कि जो बात जिसने मुझे बताई है मैं उसे किसी और को बताऊं और फिर वो पहले बंदे को पता लग जाए कि अरे मैंने तो गॉसिप कर दी।
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड आज की स्लैंग में उसको टी कहते हैं, गॉसिप कहते हैं। एंड द 67 ईयर ओल्ड वुमन जिन्होंने ये टी, ये गॉसिप जो कि अपने आस पड़ोस के ही लोगों की गॉसिप, आस पड़ोस के लोगों को ही सेल करी है, बेची है, वो बेचने के बाद शी हैज बॉट टू हाउसेस। कैन यू इमेजिन दैट? दैट्स अ न्यू बिजनेस आइडिया, इम्प्लीमेंट करना चाहते हो?
3: हॉली हॉली गिद्द

0: Step into a breathtaking experience where the world disappears and music transforms into a roaring universe around you. Zikr presents Akansha Grover Ki Mehfil, a historic takeover inside Todas Monumental 360 degree digital projection theater on 13th of September. This is not just a performance, it's a pure sensory explosion. To witness the magic, book your tickets now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugembo! Khushua.
3: There's one thing that I absolutely love, and that is winters. Oof, oof, maza aane wala hai. Hi, Gaurav.
4: Yeah, hi.
3: How are you?
4: Hi, Manti. All good, all good.
3: Ye kaha basement mein baith ke baat kar rahe ho?
4: Nahi, bas ye building ke corridor mein aa gaya tha.
3: तो आप ऑफिस में अभी भी तो घर वालों से छुप छुपा के बात कर रहे हो?
4: जी, किसी को बताऊंगा नहीं, अकेले अकेले जाऊंगा।
3: बहुत बढ़िया, वैसे भी अकेले ही ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा मोहल्ला जाएगा साथ। बट फिलहाल आपकी डीपी बड़ी अच्छी है, देख के लगता है यू आर इनटू रियल एस्टेट।
4: यस यस, राइट, दैट्स राइट।
3: तो आपको हमारी क्या जरूरत है यार, रियल एस्टेट वालों को तो इतना सॉलिड कमीशन मिलता है, वो तो हफ्ते में एक बार जर्मनी जा सकते हैं। मैंने सुना है गए हो पहले आप कभी जर्मनी?
4: नहीं, जर्मनी नहीं, बट फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड एंड वन मोर थिंग इटली।
3: ये देखो मैं कह रही हूँ, रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है फिलहाल। तो आपका गाना है कौन सा गाना है गौरव?
4: वो हसीना वो हिलम परी, कर गई जैसी जादू घड़ी, नींद इन आंखों से छीन ली, हाँ दिल में बेचैनियां हैं भरी।
3: ना ना ना ना ना ना ना ना ना, हम तुम्हें ले जाएंगे होपफुली जर्मनी को।
4: थैंक यू, थैंक यू।
3: शॉर्टलिस्ट हो गए गौरव, कांग्रेचुलेशन।
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
5: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
6: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
0: You are listening to The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big Weather Update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
9: 39 degrees out there with 37% humidity, and it actually feels like 50 degrees with the temperature.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड आज एक्टर्स डे है. आई जस्ट रेड, पर लगता नहीं कि एक्टर्स डे रोज ही होता है, हर बार होता है, हर फिल्म रिलीज के साथ होता है. एंड जस्ट नॉट द लीड एक्टर्स, यहाँ पे जिन्होंने भी शॉर्ट रोल्स भी करे उनके लिए भी एक्टर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है. बट जो एक एक्टिंग मुझे याद आती है रियल लाइफ की, वो एक ही याद आती है यार. मेरे पेट में आज दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता. हैव यू एवर ट्राइड दैट ऑन योर पेरेंट्स? अगर पेरेंट्स सुन रहे तो क्या आपके बच्चे ने कभी आप पे ट्राई किया है बहाना ये एक्टिंग? डिड यू बाय इट और नॉट? बताओ यार. ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट इवन गेटिंग, मैंने एक बार ट्राई किया था अपनी लाइफ में, एक बार. मैं बच्ची थी, मेरे तो माँ बाप मान गए थे यार, लेकिन देन उस एक्टिंग को हम कैसे भूल सकते हैं. रूट का टर्न हम नहीं लेंगे, आप मुझे बताओ 800-1062 पे कॉल करके. अगर आपके भी बच्चे ने आप पे ये एक्टिंग यूज करी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, 800-1062 इज द नंबर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड कमबैक आपका कब होगा नहीं पता, लेकिन बिपाशा बासु का होने वाला है विद हंसल मेहताज बारवंगी। दिस प्रोजेक्ट इज सेट इन 1984 बेस्ड ऑन अ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अलोक लाल्स बुक जिसका नाम है द बारवंगी नार्कोस। एंड आपने देखा उनका कमबैक स्क्रीन्स पर हो रहा है, मूवी में नहीं, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी अ वेब सीरीज। एंड बहुत सालों बाद जाकर हम बिपाशा बासु को फिर से एक्ट करते देखेंगे। आज नेशनल एक्टिंग डे भी है, एक्टर्स डे भी है, बट यू नो प्रोबेबली शी इज द ओनली इंडियन टीवी एक्ट्रेस जिनके नाम पर गाना बना है। Excited for her comeback. Well, keep it locked to Big 106.2. Let's see, ये project release कब होता है, अभी तो सिर्फ making में चल रहा है।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 4:06।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 101.2. The Beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: School's starting soon and we need a car.
3: And books, uniforms, everything.
2: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
5: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 38 degrees out there with 41% humidity. Stay hydrated.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2.

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे, आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड जब भी मुझे कोई बोलता है ना यार कि अरे अभी तो खाना खाया था, उसके बाद तुम स्नैक्स भी खा रही, उसके बाद तुमने मीठा भी खा लिया, कॉफी भी पी ली, चाय भी, एक्सक्यूज मी, आई जस्ट हैव वन थिंग टू से, ओके? एंड ध्यान से सुनना. मुझे जब जब बुलाएगा मैं तब तब जाऊंगी. वेल इफ यू आर लाइक मी और अ बिगर और अ बेटर फूडी देन मी, हम खेलने वाले हैं यहाँ पर आपके साथ. I'm gonna make you choose between two dishes and let's see कि उसमें से आप कौन सी choose करते हो, कर पाते भी हो या नहीं. Rapid fire round on food with you. Call करो मुझे 800-1062 पर and one lucky winner will get couple of movie tickets. Keep it locked to Big 106.2. 800-1062 is the number.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड पीक लंच आवर टाइम निकल चुका है, लेकिन अगर अभी तक भी खाना नहीं खाया है, वी गोना प्ले दिस गेम विद यू। लेट्स सी हू इज़ ऑन द कॉल। हेलो
2: हेलो,
1: हाय, कौन बोल रहा है?
2: हाय अवनी, दिस इज गौरव।
1: हाय गौरव, मुझे लगा यार आपने लंच कर लिया होगा अभी तक। किया नहीं किया अभी तक?
2: नहीं नहीं, आई हैव जस्ट ऑर्डर्ड द फूड। या
1: ओके, इट्स कमिंग। तो क्या मंगवाया आज?
2: आज मैंने आलू मटर की सब्जी और रोटी।
1: ये तो बड़ा बेसिक स्टेपल लंच लग रहा है। चलो ठीक है, लेट्स सी क्या खाते हो, क्या चूज करते हो। लेट्स स्टार्ट। आलू मटर की सब्जी या फिर पनीर की सब्जी?
2: पनीर की सब्जी।
1: पनीर कढ़ाई पनीर या पनीर दो प्याजा?
2: पनीर दो प्याजा।
1: पनीर दो प्याजा या फिर राजमा चावल?
2: राजमा चावल।
1: राजमा चावल या छोले चावल?
2: राजमा चावल।
1: राजमा चावल या कढ़ी चावल?
2: Being a Punjabi, I would choose कड़ी चावल।
1: कड़ी चावल थोड़ा ज्यादा

0: राजमा चावल या छोले चावल?
1: राजमा चावल।
0: राजमा चावल या कड़ी चावल?
1: बींग अ पंजाबी आई वुड चूज कड़ी चावल।
0: कड़ी चावल थोड़ा ज्यादा मुश्किल लग गया ये। कड़ी चावल या फिर आलू कुलचा?
1: कड़ी चावल।
0: कड़ी चावल आलू कुलचा? ओ माय गॉड, कड़ी चावल ने बीट कर दिया आलू कुलचा को। कड़ी चावल या छोले भटूरे?
1: छोले भटूरे।
0: ओके, छोले भटूरे या लस्सी?
1: छोले भटूरे के साथ में लस्सी आती है तो वी कैन मर्ज इट टुगेदर।
0: बड़ा कॉम्बो, छोले भटूरे फॉर द विन, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कोई भी पंजाबी छोले भटूरे के ऊपर जा सकता है, किसी को जिता सकता है।
1: एब्सोल्युटली यस।
0: Congratulations, Gaurav. कौन सी मूवी देखने वाले हो?
1: Thank you. I am hoping to go for Hewan, Akshay Kumar, Saif Ali Khan.
0: अगर मैं दोनों में से चूज करवाऊँ, सैफ अली खान या अक्षय कुमार, who would you choose?
1: अक्षय कुमार।
0: गौरव जीते हैं ओपन मूवी टिकट, सही बता के गए भाई गौरव। टू फिल्म्स रिलीजिंग दिस वीकेंड, कौन कौन सी है बताती हूँ। Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: earns kilometers. Now your car insurance earns rewards. Buy from insurancemarket.ae and earn Alfred coins. Call 800 Alfred.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस फ्राइडे रिलीजिंग टू फिल्म्स, सैफ अली खान की एक फिल्म, एक करीना कपूर खान की एक फिल्म. आप कौन सी देखने जाने वाले हो? वन इज दायरा एंड अनदर वन इज हैवान. बताओ मुझे 0543091062 पर मैसेज करके, दिस व्हाट्सएप नंबर. लेकिन टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, फ्राइडे इज गोना बी अमेजिंग क्योंकि मैं ये दोनों फिल्म देखने वाली हूँ. और अब आप पूछोगे किसके साथ देखने वाली हूँ, बिकॉज जिसके साथ मैं प्लान बनाती हूँ नहीं पूरा हो पाता. इसलिए आप किसी और का हाथ मत थामिए, खुद का हाथ थामिए, अकेले मूवी देखकर आइए. आई एम टेलिंग यू इट्स सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस, कोई परेशान करने वाला भी नहीं होता यार. लेट्स सी कौन सी फिल्म दिल लेके जाएगी, हैवान या फिर दायरा. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2. कमिंग अप नेक्स्ट इज द बिग थ्रिल विद मानसी.

0: नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood. Ho jandi

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक. गुड इवनिंग. द टाइम राइट नाउ 5:07.
2: Bollywood.

0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: School's starting soon and we need a car.
4: And books, uniforms, everything.
3: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready. Get driving.
1: The Big Chill.
6: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
0: It's 38 degrees, लो जाएगा अराउंड 33 फिलहाल, थैंक गॉड। इट्स नॉट वेरी ह्यूमिड फिलहाल, ह्यूमिडिटी 45% पर है एंड आई थिंक द BER मंथ्स आर हियर, द पम्पकिन स्पाइस लाटे मंथ्स, दो इट विल टेक टाइम फॉर अस बट स्टिल नॉट बैड। आई कैन डील विद द हीट बट नॉट विद द ह्यूमिडिटी।
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2.

0: Smart people compare before they buy, especially insurance. Let insurancemarket.ae find you great cover at a great price. Why pay more? Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening. This is The Big Thrill. I'm Mansi and Asham. Someone very, very special joining us. He's a great singer, a great composer, music director. And अगर आशा हम आप कुछ अच्छा गाते हैं तो क्या पता अगर आप उस ब्रेक के तलाश में हैं तो वो ब्रेक आपको मिल जाए. We're talking about the karaoke every single evening while you're stuck in the traffic jam. We jam here.
1: Karaoke.
2: एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है फॉर बाथरूम सिंगर्स. गाना आए या ना आए, अगर गाने का शौक है एंड दो चार लाइनें आप बिना लिरिक्स भूले गुनगुना सकते हैं, देन आवाज आपकी, कॉन्सर्ट आपका, ऑडियंस मेरी. अनाशाम, दिस इज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स फ्रॉम द 90s.

मोहब्बत की है तो ये गाना लूप पे सुना होगा, गाना गेस कर लिया है ये ट्रैक कौन सा है। एंड अगर आपको याद है then it's time for the karaoke, give me a call 800-1062 पर।

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलरस से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलरस कहाँ है अलरस?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
2: अलरस है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलरस।
3: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
4: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
3: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
5: Extremely slow moving traffic at the moment. अगर आप हैसे स्ट्रीट पे हैं from JVC, JVT all the way towards Motor City, Production City, heavy traffic Marina से if you're going towards JBR, 20 से 25 मिनट का डिले Discovery से फुरजान, आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा. ट्रैफिक ऑल्सो बिट पैची नियर अल कूज इंडस्ट्रियल एरिया. प्लस अगर आप मर्डिफ से मोहिसना जा रहे हैं टेकिंग द शेख मोहम्मद बिन जायद, अभी पार्टी शुरू हुई है, फिलहाल 27 मिनट डिले, बट आई थिंक इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स ये एक घंटे तक पहुंच जाएगा. शेख जायद पे फिलहाल इट्स शोइंग अ 37 मिनट डिले एज वेल. हैवी ट्रैफिक काइंड ऑफ नॉट मूविंग नियर दुबई गुलसूक, अगर आप फहीदी के आसपास हैं. एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट, यू हैव माय नंबर 800-1062 पर.
3: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
6: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ.
7: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं.
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.
8: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागी.

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। Big 106.2

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, you have Big Thrill Mansi and we are karaoke-ing here while you're heading back home. Hum yahan pe mahol banate hain, gaane gaate hain. Exclusive platform hai for bathroom singers and joining us is Sonu. Kitna cute naam hai Sonu. Ye pyar ka naam hai aapka ki yahi naam hai bas?
2: Sonu Delhi wale.
1: Ki Delhi wale jo hai dilwale to hote hain lekin wo pyar mein dhoka bhi bahut dete hain.
2: Dhoka dete nahi hain, hum khate hain.
1: ये पहला दिल्ली वाला है जो कह रहा है कि धोखा देते नहीं खाते हैं. मुझे तो दिल्ली वालों ने बहुत धोखा दिया, हमें तो लूट लिया मिलके दिल्ली वालों ने.
2: नहीं मैं तो दिल्ली इसीलिए आया, मैं दुबई इसलिए आया कि मेरा ब्रेकअप हो गया था.
1: ओए होए क्यों? अच्छा दिल टूटा तो आप सीधे दुबई आ गए, पर ये तो अच्छा हुआ ना.
2: हाँ बोल सकते हो अच्छा हुआ, लाइक मेरे को एक्सपीरियंस मिला दुबई का, बट मेरे लिए वो चीज बहुत पेनफुल थी.
1: सो आपने यहाँ दिल लगाया अभी तक के नहीं लगाया?
2: नहीं मैम, वो लास्ट ही रहेगी.
1: आखिरी मोहब्बत. फिलहाल सोनू के दिल का दर्द उनकी आवाज में आता है कि नहीं, अब हम सुनेंगे.
0: Karaoke.
1: All right, सोनू, ये है आपका ट्रैक.
2: पाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता. And that's all, ma'am. Thank you.
1: सच्ची मोहब्बत नहीं थी सोनू तुम्हारी वो. सच्ची मोहब्बत होती ना, अभी दिल का दर्द आवाज में आता, ये तो कानों तक आ गया है. बट मुझे एक बात बताओ, ब्रेकअप हुआ क्यों?
2: मतलब उसके माँ बाप की एक्सपेक्टेशन अलग थी, वो लड़ भी लेती तो भी होता है ना कि उसके माँ बाप का फैक्टर अलग ही होता है लड़कियों के लिए. वो सीन
1: तो उसने धोखा नहीं दिया ना आपको, इट इज अ म्यूचुअल ब्रेकअप.
2: फॉर मी मैम, मैं अभी तक उस चीज को लाइक, अगर एक लड़का 24 घंटे में से 18 घंटे एक लड़की के बारे में सोचता है जिससे 3 साल पहले ब्रेकअप हुआ, तो कहीं ना कहीं वो चीज माइंड में हमेशा रहती है ना कि नहीं वो लड़की कुछ तो थी कि आज तक मुझे याद है. तो
1: ओए होए, मतलब आप तो बहुत बड़े वाले आशिक हो. तो है फेसबुक वेसबुक पे है कि ब्लॉक कर दिया है?
2: नहीं मैम, इंस्टाग्राम पे है, बट आई सी हर प्रोफाइल.
1: यू सी हर प्रोफाइल?
2: बट आई कांट फॉलो दैट गर्ल बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मेरी वजह से उसको कोई भी कभी भी प्रॉब्लम आए. एंड आई एम हैप्पी टू सी हर, बट आई एम वेरी सैड शी इज नॉट विथ मी, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी आई सी हर एवरी डे.
1: जिन्होंने भी कभी मोहब्बत की है ना, तो मोहब्बत में जो दर्द होता है ये सोनू बता रहे हैं. सो सोनू, मैं आपको ऑल द बेस्ट बोल सकती हूँ. मैं इतनी बात कह सकती हूँ कि जो आपकी किस्मत में होता है वो आप तक पहुँच ही जाता है, तो अगर वो आपके लिए लिखी है तो वो आप तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से पहुँच जाएगी. थैंक यू सो मच अपनी लव स्टोरी शेयर करने के लिए एंड यू हैव अ ग्रेट इवनिंग.
2: थैंक यू मैम, सेम टू यू,
1: बाय. ये तो काफ़ी इमोशनल सी स्टोरी होगी. फिलहाल गाना सोनू ने बिल्कुल अच्छा नहीं गाया. अगर आपको ये गाना आता है आप गा सकते हैं. गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062.
0: Karaoke.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: High speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf TG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
2: School's starting soon, and we need a car.
3: And books, uniforms, everything.
2: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
5: Digestion cool tips with Dabur Pudin Hara.
6: गर्मी हो या हैवी मील्स के बाद डिस्कम्फर्ट, डाबर पुदीन हरा है आपका अंदर का एसी. आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर अ रिलैक्स्ड कंफर्टेबल टमी.
5: डाबर पुदीन हरा, स्टे इंडिजेशन फ्री द नेचुरल वे. अवेलेबल ऑन नून मिनट्स. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन.
2: बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.
7: स्लो मूविंग ट्रैफिक आपको मिलेगा शेख जायद पे. फिलहाल 1 hour 10 minute डिले. दिस हैवी ट्रैफिक ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद. ट्रैफिक ट्रेलिंग वेरी वेरी स्लो एट द मोमेंट. अगर आप हेसा स्ट्रीट पे हैं, जेवीसी जेवीटी ऑल द वे टुवर्ड्स स्पोर्ट्स सिटी. इसके अलावा बम्पर टू बम्पर है. अगर आप मनकूल करामा उद मेथा साइड है, कहीं और अटके हैं, मुझे बता सकते हैं 800-1062 पर.
2: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
8: Tum bimar ho?
9: No.
8: To leti kyun?
9: Mere body mein sensations hote hain, pehle unko control karte hain.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, यह है बिग थ्रिल. मैं हूं मानसी एंड वी आर कार्योकिंग. एवरी सिंगल डे जब आप घर जाते हैं, ट्रैफिक जैम में हम जैम करते हैं आवाज आपकी, कॉन्सर्ट आपका, ऑडियंस मेरी. एंड राइट नाउ जॉइनिंग अस इज दीपेश. गुड इवनिंग.
2: गुड इवनिंग मानसी, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड. आप कैसे हैं?
2: बस मैं ठीक हूँ.
1: ये अभी सोनू दिल्ली की कहानी आपने सुनी, आपका भी दिल ऐसा कभी टूटा है?
2: टूटा तो नहीं है, बट I love to sing a song.
1: अच्छा, टूटा नहीं है, तोड़ा है आपने किसी का दिल?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता.
1: ओफ ओफ, गुस्ताखी, माशाल्लाह. उर्दू मुझे बड़ी अच्छी लगती है. तो ये गाना आई एम श्योर आपने भी पहचान लिया है.
2: अगले लिसनर ने जो गाया वो मैं गा सकता हूँ. वो उसने सही पहचाना था या गलत पहचाना था?
1: बिल्कुल सही पहचाना था उसने, बट उसने गाया कुछ नहीं, उसने बस अपनी लव स्टोरी शेयर करी. आप गा सकते हो ना, अब आपकी आवाज में सुनते हैं. गला साफ किया जा रहा है, मतलब मंझे हुए खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं.
2: नहीं नहीं नहीं, पहले से नहीं बनी है. छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता हमें तुमसे मोहब्बत.

0: नहीं आता।
1: मैंने कहा था ना मंजे हुए खिलाड़ी आए हैं, कमाल बवाल गाया है दीपेश।
0: थैंक यू, शुक्रिया।
1: तो अगर आज 2026 में मैं कहूँ ये गाना पहली बार किसके लिए सुना था आपने?
0: ये गाना अपनी कॉलेज लाइफ में सुना था मैंने।
1: अरे हाय, एक तरफा मोहब्बत।
0: हाँ, तो कॉलेज में तो होता ही है, और बंदा जब शाय हो तो ऑब्वियसली काफी सारे लोग होते हैं वन साइडेड।
1: ये देखो, इसे शाय कहते हैं, जो काफी सारे लोग होते हैं वन साइडेड, वो बंदा शाय नहीं होता है। उसको जल्दी से जिंदगी से बाय करने
0: इजहार नहीं कर पाता है।
1: अरे तो पर इतने सारे लोगों को इजहार करना ही क्यों है, प्यार तो एक से होता है।
0: इतना सारे लोग मतलब इट्स नॉट लाइक एवरी गर्ल, बट जनरली वो फीलिंग हो जाती है, और वो जब बताते नहीं है लड़की मूव ऑन हो जाती है, फिर लाइक महीने दो महीने बाद कोई और अच्छी लग जाती है, बट आप ऑफ कोर्स यू कांट अप्रोच देन, यू हैव टू बी देयर ओनली।
1: वेरी नाइस, आपको भी अच्छी लगी तब आपके लिए थी नहीं है।
0: नहीं, वो ऑलरेडी मूविंग ऑन हो जाते हैं, हम भी स्टडी में ध्यान हो जाता है, तो फिर
1: एक गाड़ी गई दूसरी आई वाला हिसाब है। बट गाया आपने बहुत कमाल, डिफेंड बहुत कर रहे हो।
0: मी ऑन अ रॉन्ग वे।
1: अभी भी सिंगल हो?
0: नहीं नहीं, मैरिड हो।
1: अच्छा, तो उन्हें तो बता दिया था ना?
0: हाँ, बता दिया था।
1: तो वहाँ पे हिम्मत आ गई थी ना?
0: हाँ।
1: कहीं तो आपकी गाड़ी रुकी, बट थैंक यू सो मच, यू हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट इवनिंग एंड यू सैंग रियली वेल, बाय। कारियोकी

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:08।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2.

0: Love your car, not your insurance bill. Find great car insurance at a great price with insurancemarket.ae. Compare, choose, drive. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: जब से मैंने ये खबर पढ़ी है ना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. अब इफ यू डोंट नो, दिस 67 ईयर ओल्ड कोलंबियन लेडी इज गोइंग वायरल ऑन सोशल. ये अपने अड़ोस पड़ोस की गॉसिप बेचती है. शी सेल्स इट फॉर अ लिविंग एंड शी अर्न्स कैश बाय शेयरिंग एंड कीपिंग सीक्रेट्स. उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि बस यही बिजनेस करके मैंने दो घर बना लिए हैं. मतलब लोगों के घर तोड़ के घर बनाने वाली स्कीम. अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान से अगर आप हो, मतलब किसी भी देसी जगह से अगर आप हो, तो हमारे मोहल्ले की आंटियां तो ये कितने सालों से फ्री में कर रही हैं. उन्हें तो इस बिजनेस के बारे में पता था ही नहीं, वरना फ्री में जो वो यहाँ से वहाँ उधर से इधर गॉसिप करती हैं. घर की बुआएं भी कितना पैसा बना सकती थी, राइट? वैसे अगर आपके आसपास कोई है ऐसा जो इस बिजनेस में थ्राइव कर सकता है, हु डू यू थिंक आपकी फैमिली में से, आपके फ्रेंड्स में से इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी विद दिस बिजनेस? गॉसिप यहाँ से वहाँ करना, सीक्रेट बेचना, सीक्रेट रखना. Do let me know while we are playing the 5-second rule. It's a fun game. आपको मिलते हैं 5 second. मैं आपको देती हूँ कुछ categories. तीन चीजें बतानी होती है 5 second के अंदर. पता है मुझे, it sounds like लड्डू, but जलेबी सा गेम है. खेलना है तो कॉल करो 800-1062 पर. सुखविंदर सिंह की आवाज taking you to early 2000s with this one from Tashan.

0: going to the beat of Bollywood.
1: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. This isn't just a holiday. It's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
2: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
3: Recalculating route to Sharaf DG for back to school shopping.
4: Parents, you heard that right. Win up to 5,000 dirhams back on laptops and tablets. Get gifts worth 500 dirhams and enjoy an extra 5% student and teacher discount. And that's not all. Save up to 200 dirhams with DIB, Al Hilal Bank, and HSBC. Power up for AI amplified learning. Shop in store or online. DNC Supply.
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
6: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: 36 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 33। फिलहाल ह्यूमिडिटी कम है 43% पर।
6: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill, I am Mansi and I am not shocked, but I am just surprised that this business in India. So there's this 67-year-old Colombian woman who makes money by just sharing and keeping secrets. Matlab basically, wo neighborhood gossip yahan se wahan karti hai and she earns cash and this has helped her build two houses. Joining me is Vishal. Hi Vishal, good evening.
2: Hi, good evening.
1: तो आपके आसपास फैमिली में ऐसा कोई है जो इस बिजनेस में थ्राइव कर सकता है विशाल?
2: बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोग हैं ऐसे, लोगों के साथ तो मेरा उठना बैठना होता ही रहता है।
1: तो कौन है जो बहुत ज्यादा कमाएगा इस बिजनेस में?
2: मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो लोग भी यूएई में बोलेंगे मुझे बेफिजूल फेमस कर दिया। आप किसी को भी बोल दीजिए रैंडमली, ये बात मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। नेक्स्ट डे बस खलीज टाइम में छपने के अलावा वो सब लोगों को पता चल जाएगा।
1: नहीं यार विशाल, मैं ऐसी नहीं हूँ क्योंकि मैं रखती हूँ सीक्रेट।
2: आप तो रेडियो में काम करते हो, आपको तो मैं बताऊंगी तो आपको तो ऑलरेडी यूएई को ऐसे ही पता चल जाएगा सारी चीजें।
1: मैं आपका नाम लिए बगैर उसकी कहानी बना के इंस्टाग्राम पे डाल दूँ वो अलग बात है। तब क्या लगता है, लड़कियाँ इसमें ज्यादा पैसे बना सकती हैं या लड़के?
2: वो भी लड़कियाँ ही बेस्ट हैं उसमें।
1: लड़के कम नहीं सर, हम मैं आपको क्या बताऊं, मैं भी यहाँ नाम लूंगी तो लोग बदनाम हो जाएंगे क्योंकि मेरे तो
2: बदनाम
1: चार कदम दूर बैठे हैं।
2: नाम तो हो जाएंगे, आप बदनाम करेंगे कम से कम। हाँ,
1: फिर
2: नाम
1: वो जो कल एचआर मेरे नाम करेगा ना चिट्ठी तो वो मुझे पता चलेगी। फिलहाल विशाल अब आप यहाँ आयो, विल प्ले दिस फन गेम, इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल। यू गेट 5 सेकंड्स, आई एम गोना गिव यू फ्यू कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी है फटाफट 5 सेकंड के अंदर। Three things that are red.
2: Red t-shirt. Pant, okay. Bottle.
1: Not bad. फटाफट खेलना है. Quickly name तीन सुनील शेट्टी की movies.
2: धड़कन.
1: Okay.
2: And.
1: मोहरा, border.
2: हाँ बहुत है, border.
1: हेरा फेरी. कितनी सारी है. कितनी सारी है.
2: बाहुबली, बाहुबली.
1: तीन लड़कियों के नाम with the letter V.
2: वी, वर्षा
1: और
2: वैशाली एंड विरोनिका।
1: कौन है ये तीनों?
2: ये तीनों मुझे नहीं पता।
1: नहीं। तीनों में से आपकी फेवरेट कौन है, वर्षा, विरोनिका या वैशाली?
2: विरोनिका।
1: कौन है विरोनिका?
2: मुझे नहीं पता।
1: कितना झूठ यार विशाल, वी फॉर विशाल, वी फॉर विरोनिका, कुछ हुआ होगा ये, अब बाद में पूछेंगे वो, क्योंकि अब आप अपनी सीक्रेट मुझे यहाँ बताओगे भी तो मुझे कुछ मिलना नहीं है उससे। थ्री थिंग्स दैट यू पिक अप फ्रॉम अ होटल रूम।
2: टूथब्रश
1: और टूथपेस्ट। टाइम खत्म हो गया। तीन चीजें जो बीवी से छुपाते हो।
2: बीवी से छुपाया
1: विरोनिका, विरोनिका वैशाली, वर्षा,
2: वर्षा वैशाली।
1: तीन ऐसी चीजें जो शादी के बाद बदल गई हैं फॉर गुड।
2: फॉर गुड, ठीक टाइम पे खाना मिलना।
1: वाओ।
2: और ठीक टाइम पे सो जाना।
1: वाओ।
2: और एक्सरसाइज टाइम पे करना।
1: ये तो कुछ खास फायदे नहीं है, तो आप अकेले रह के भी कर सकते हो। मैंने सोचा साथ, कंपेनियनशिप, मोहब्बत, कोई दिल की बात, कोई सीक्रेट शेयर करने वाला। फिलहाल एक आधी जवाब आपने टाइम पे दिया, बट वो गॉसिप वाली बात बढ़िया थी कि किसी को भी आज के जमाने में कुछ बताओ अगले दिन अखबार में छप जाता है, विच आई काइंड ऑफ अग्री। थैंक यू सो मच विशाल, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग।
2: थैंक यू, यू
1: बाय। या 5 सेकंड रूल, द ओनली रूल टू प्ले दिस गेम इज गिव मी अ कॉल 800-1062।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग द टाइम राइट नाउ 7:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: School's starting soon and we need a car.
4: And books, uniforms, everything.
3: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
6: A bump, a break-in, a hospital bill. Suddenly, insurance really matters. That's when insurancemarket.ae delivers. For claims or cover, call 800-ALFRED. Insurancemarket.ae.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: 36 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 33। फिलहाल ह्यूमिडिटी आज ठीक ठाक है 45% पर। वैसे लेट मी टेल यू, जर्मनी में फिलहाल टेम्परेचर है 14 डिग्रीज। व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट जर्मनी? बिकॉज वी आर टेकिंग यू देयर। अगर आपने अभी तक चेक इन नहीं किया है, डू इट राइट अवे।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2
10: Big.

0: Great health insurance doesn't need a painful price. Compare your options and find great cover at great value with insurancemarket.ae. Call 800 Alfred.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: Exactly, we're taking you to Germany and shortlist hone ke liye every single evening we give you a chance. Check-in karne ke liye aapko ek message bhejna hota hai, wo bhi WhatsApp message. 0543091062 हमारा WhatsApp नंबर है. To check in, just send in your names. And अगर यहाँ नंबर नहीं लगता है, you're always welcome to head to our Instagram page. वहाँ 100% आपको मौका मिल ही जाएगा. 106.2 Big FM, that's our Insta handle. फिलहाल randomizer ने ढूंढ लिया है Mr. Abhijeet को. Hi.
3: Hi.
2: How are you, Abhijeet?
3: Yes, I'm good.
2: DP तो बड़ी अच्छी है. कौन सी कंट्री की है?
3: हंगरी.
2: हंगरी. ज्यादा दूर नहीं है जर्मनी से हंगरी वैसे.
3: हाँ.
2: तो जब वहां तक गए थे तो और आगे घूमा थे जर्मनी?
3: नहीं, आई वेंट टू हंगरी, प्राग एंड ऑस्ट्रिया. सो आई कवर दिस थ्री कंट्रीज.
2: कोई बात नहीं, बाकी है होपफुली, फिंगर्स क्रॉस, हम कवर करवा देंगे. तो आर यू अ ट्रैवलर? यू एंजॉय ट्रैवलिंग?
3: यस, आई डू ट्रैवल अ लॉट.
2: कितने कंट्रीज कर लिया आपने?
3: Maybe somewhere around 10 to 12.
2: Not bad at all. Favorite so far?
3: Switzerland.
2: I love Switzerland too. But Germany is going to be a vibe, especially in winters. And I love Christmas markets. So, बहुत मजा आने वाला है. मैं आपको दे रही हूँ chance to add one more country to this list. Very, very simple. This is called the Bolly Beats to Germany. मैं आपको एक गाने का intro सुनाने वाली हूँ. आपने 10 second के अंदर गाना guess करना है. That's it.
3: Okay.
2: Switzerland गए हो, जगह अच्छी लगती है, तो मतलब थोड़ी फिल्मी तो होगी ही.
3: Kind of.
2: है ना? चलो, all the very best. Let's see के आशाम अभिजीत shortlist हो पाते हैं कि नहीं.
3: Okay.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: All right, आपका गाना है?

0: वहाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण,
1: जादू तेरी नजर।
2: गाया है कभी आपने ऐसे हॉलिडे पे किसी के लिए? मत गाना, गाना मत गाना, हमारे साथ जाओगे तो गाना आप नहीं गाओगे, प्रॉमिस करो पहले।
0: किरण थी नहीं ना साथ में?
2: नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ किरण मिल भी जाए जर्मनी में, आप गाओगे नहीं ये वादा करो मुझे।
0: ओके ओके,
2: बाय अभिजीत। आप हो गए हैं शॉर्ट लिस्ट, एक स्टेप दूर हो बस आप फॉर दिस फैंटास्टिक ट्रिप टू जर्मनी। फिंगर्स क्रॉस, होपफुली ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया है, अब जर्मनी भी इस साल हो ही जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।
0: वाओ वाओ, थैंक यू,
2: कांग्रेचुलेशंस, बाय।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर कॉल, थैंक यू, मेक माय डे,
2: बाय बाय।
3: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: Participate in the big presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: आपने अभी अभी सुना अभिजीत कैसे हुए हैं शॉर्टलिस्ट फॉर दिस फैंटास्टिक ट्रिप टू जर्मनी. यू कुड बी नेक्स्ट. एंड चेक इन करने के लिए व्हाट्सएप करना बहुत जरूरी है. बिग चेक इन, अपना नाम व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है, फोन पे मैसेज नहीं करना है. 0543091062 पर. लाइक आई मेंशन, अगर यहाँ आपका नंबर नहीं लग रहा है, आपने काफी ट्राई किया है, हेड टू आर इंस्टाग्राम पेज, वहां से भी आपको एंट्री मिल सकती है. टू द बिग चेक इन टू जर्मनी 106.2 बिग एफएम. इट इज ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, अमेजिंग मौसम एंड ग्रेट कंपनी. यू शाउट आउट टू आर लवली स्पॉन्सर्स, प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स डैन्यूब प्रॉपर्टीज, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, एसोसिएट स्पॉन्सर फोर्ड एंड शराफ डीजी, एंड आर लवली ट्रैवल पार्टनर्स एएफसी हॉलीडेज. सो कीप चेकिंग इन, क्या पता अगला नंबर आप ही का लग जाए.
0: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Alright, good evening. 8:10 while you're heading home, stuck still in Sheikh Zayed ka traffic. I think life is a full circle. कहते ना खूबसूरत लड़कियों की मैच खराब होती है तो मुझे पता नहीं कितने साल हो गए हैं बट 2021 से 2026 कितने साल हो गए पांच साल बाद अमल मलिक इन द स्टूडियो।
2: मैं आपके स्पीच को बीच में काट रहा था गलती से क्योंकि मैं अपने अमालियंस के लिए भी लाइव जाओ आप अपने लिसनर्स के लिए जो जा रहे हो लाइव तो हम भी जाना पड़ेंगे।
1: Yeah, we are live on Instagram also. So for all those who are listening to us on our app, please head to our Insta page and join us. We are live there. First of all, welcome to UAE once again. And it is always such a pleasure to have him. I think one of the most candid celebrities to interview is you.
2: Thank you.
1: Trust me, when you came here in 2021, I was also pretty new with Big 106.2. You made me feel so special. Or I'll give credit where it's due. Amal ke interview ke baad hi mujhe pata chala ki main funny hu. Aur maine char logon ko bola. Isne kaha tha ye ladki funny hai. To filhal I think he is trying to go live on his page as well. And he is on the phone. His team is here. We're live on our page, Big 106.2. So join us. If you have any questions for him, feel free. Any Amalians here in the UAE, you can also give us a call on 800-1062. Filhal, ek gana suna de Amal, ke hum baatein karenge abhi.
2: Live sunna chahoge ki aap track baja rahe ho?
1: Nahi, hum dono cheeze karenge yahan pe. But first,
2: aaj to aapke show ko saath mein end karke jayenge.
1: मुझे लगा बोल रहे हैं इसके बाद डिनर पे भी ले जाऊंगा खाना वाना भी खा के जाएंगे
2: थोड़े एक हफ्ते के इंटरव्यूज खत्म हो जाए पक्का प्रॉमिस।
1: बट टेल मी हाउ इज इट गोइंग यू जस्ट डन दिस मैसिव मूवी विच आई थिंक मिलेनियल्स के लिए तो यार नॉस्टैल्जिया है पूरा।
2: हम लोग तो इस फिल्म पे जी के बड़े हुए।
1: हाँ, और मतलब आई थिंक एज अ पर्सन हु grew up in that era, आपने कभी सोचा था कि you are going to do this इमरान हाशमी के लिए गाना बनाना?
2: 16-17 साल का था मैं यार, I used to stand with my baja, my keyboard, Casio Yamaha का भी नहीं था, Casio कंपनी का था, और मैं खड़े रहता था outside मुकेश भट्ट और महेश भट्ट's office, I was 16-year-old, people may have whatever perception, legacy, name, Malik, as a newcomer, जैसे हर एक इंसान बाहर से भी आए किसी शहर से, हमें सिर्फ इतना एक्सेस था दोनों भाइयों की हम मुंबई में जानते थे कि किसका ऑफिस किधर है। वहां ना पापा ने कभी फोन किया ना हमें कोई रिकमेंडेशन लेटर था। आई वुड कीप स्टैंडिंग बिकॉज आई न्यू देयर वर टू प्लेसेस हु वर गिविंग चांसेस टू न्यूकमर्स व्हिच वाज महेश भट्ट मुकेश भट्ट विशेष फिल्म्स एंड माय काइंड ऑफ म्यूजिक यू नो बोल दो ना जरा इफ यू सी टुडे कौन तुझे इफ यू सी चले आना इफ यू सी। तो मैं दो तरफ से प्यार को देखता हूँ हमेशा इंटेंस पागलपन दीवानापन वाला प्यार मिलेनियल्स का जो है वो मैं अपने माइंड में आंख बंद करके आई थिंक अब इमरान हाशमी ना मेक दो सॉन्ग्स एंड जब अमर फॉर एवर बाहे खोलने वाला आई एम अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड SRKN एंड आई थिंक आई एम एज ऑफ नाउ द मोस्ट फेमस शाहरुख खान फैन इन द SRK यूनिवर्स आई एम पार्ट ऑफ देयर फैन क्लब
1: वाओ
2: सो आई एम वन ऑफ द मोस्ट आई टेक प्राइड इन बीइंग हिज फैन
1: आई एम अ फॉरएवर इमरान हाशमी फैन आई बिलीव के अखा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी
2: इमरान हाशमी तो भाई इमरान हाशमी है
1: मतलब उनके गाने देखकर हम लिटरली बड़े हुए
2: उनकी एनर्जी उनका सोल मेरे लाइफ में उनका कंट्रीब्यूशन सी आई एम अ क्रेजी फैन ऑफ शाहरुख खान बट माय लेगेसी कुड बी टेकन फॉरवर्ड सो ब्यूटीफुली बिकॉज़ ऑफ टू सॉन्ग्स जो इमरान हाशमी ने मेरे साथ किया मैं रहूं या ना रहूं
1: ब्यूटीफुल
2: विदाउट इमरान हाशमी माय करियर इज इनकम्प्लीट एंड दिस वाज माय हैट्रिक कभी सोचा नहीं था मानसी दैट 16 ईयर ओल्ड अमल मलिक ड्रीम विल कम ट्रू आफ्टर 20 इयर्स मैं रुका रहता था एंड आई विल टेल यू दिस ट्रूली दैट दिस इज अ ट्रॉमा दैट आई हैव हैड फॉर 12 इयर्स कि मैं अच्छा हूँ कि नहीं हूँ क्योंकि मैंने सबके साथ काम कर लिया विशेष फिल्म के साथ कभी नहीं कर पाया और वो बच्चे को सपना था कि इधर से एक फोन आए और जब वहां पे भी फोन नहीं आया विराग सर हु इज द रश्मि एंड विराग हु द लिरिसिस्ट दे टोल्ड मुकेश जी दैट यू नो अमल ऑलवेज कीप्स कमिंग यानी कीप्स सिंगिंग हियर आप एक बार सुनिए एंड बहुत और मैंने सोचा था क्या ही यू नो एक चीज होते देने वाला जब भी देता
1: छप्पर फाड़ के हाँ।
2: मैंने सोचा कब मिलेगी आशिकी 3 मिल जाए 4 मिल जाए 7 मिल जाए कभी तो मिले और सबसे बड़ी उनकी फिल्म obviously the original was a disaster according to the world but over 20 years tera mera rishta to phir aao the movie awarapan one aur main जो इस इन दोनों फिल्मों से पहले मैं आवारा वन हूँ. आवारा वन. सो आई थिंक माई लाइफ इज लाइक अ वैगाबॉन्ड म्यूजिशियन. एंड उस टाइम पे मैं बच्चा था, अभी भी दिल से हूँ, बट आई वॉज लाइक ये सपना
1: है. ये मैनिफेस्टेशन है ना समवेयर.
2: बिल्कुल.
1: टाइम लगता है बट जब वो आता है तो फिर
2: मैनिफेस्टेशन यूनिट 100% बिलीफ. ये एक ही जगह, एवरीवेयर एल्स आई एम कॉन्फिडेंट. यहाँ पे मैं खुद को टैग नहीं दे पा रहा था कि मैं अच्छा म्यूजिशियन हूँ कि नहीं, क्योंकि कभी विशेष फिल्म से फोन नहीं आया. टुडे व्हेन आई टॉक टू विशेष भट, हु इज मुकेश जी सन, आई टेल हिम दीज थिंग्स, ही इज लाइक ब्रो इतना इट मैटर टू यू. आई सेड यस, एंड व्हाट बेटर देन आवारापन टू अ किड हु वाज 16 हु नेवर इवन न्यू. पिक्चर देख के आई वाज लाइक क्या दुनिया है, क्या मूवी है एंड क्या म्यूजिक है. And kudos to the original makers also and Mustafa and Pritam. And वहाँ से legacy उनका एक baton forward pass हुई है. मैंने इस film का title song किया, मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है. Today it's crossed a big number and it's everywhere. It's beautiful.
1: It's a massive, massive song.
2: थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ. उन्हें भी आदत है, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ. फ़ासी, फ़ासी, फ़ासी, फ़ासी. The Taurus has been tongue tied today.
1: However, we are going to get that the Taurus in Gemini. But मैं बोल रही थी कि
2: Madam's tongue didn't come through customs after that.
1: No, I was just so lost in Avarapan too because I am a big fan of the music. I was waiting for this music. और जब ये movie आने वाली थी, मैं कहती थी जो Gen Z's की सहियारा है, हम millennials के लिए वो Avarapan 2 होगी. And millennials, we've proved that.
2: Yeah, truly.
1: मतलब हमने जाके वो सब नहीं किया है जो Gen Z's कर रहे थे इन द थिएटर, बट व्हाट अ मैसिव मूवी.
2: चलो वो सब
1: है, आपके Gen Z's भी हैं बहुत सारे.
2: हाँ, पर बच्चे लोगों को ने वो इमोशन देखा नहीं है. सैयारा इज द सन, द फादर इज आवर
1: स्टेटमेंट.
2: और दोनों फिल्में मोहित सूरी ने ही बनाए, सो इट्स बोथ हिज बेबीज. आई थिंक वो लेगेसी बहुत ब्यूटीफुली इन लोग ने सेकंड पार्ट में आगे लेके गए. द फिल्म इज वेरी सिंपल एंड हार्टफेल्ट. अभी जब आए नेक्स्ट पार्ट, दे ऑलरेडी वांट पार्ट 3. मेरे को बोल रहे हैं आप अब क्या बना रहे हो पार्ट 3 के लिए. आई सेड पार्ट 2 में ही हूं मैं, इतनी बड़ी बात है.
1: बट एक और अगर कोई इमरान हाशमी का गाना रिक्रिएट करने का चांस मिले.
2: रिक्रिएशन से तो हमने हाथ जोड़
1: लिए. लाइक एक आधा,
2: लाइक आई एम अ क्रेजी फैन ऑफ जरा सी दिल में दे जगह.
1: ब्यूटीफुल
2: प्रीतम दास सॉन्ग ऑब्वियसली एज अ ट्रिब्यूट. इफ आई एवर हैव टू डू दिस इज द होल जन्नत साउंडट्रैक के क्या गाने थे. आफ्टर आवारापन आई फेल्ट the kind of music imran hashmi ke to itne hit up chuno
1: zeher again
2: sab but yeah. wo sab are already songs which have come from a different country and wo lamhe and adata songs from pakistan which were integrated right. in bollywood
1: yeah.
2: but when pritham made these songs or even his wo bhi kya gana hai jo khabo khaya
1: wow
2: kk and pritham ke jo gaane from jannat hai somewhere even
1: ha tu hai ha tu
2: even though that song is वेरी एक और थर्ड सॉन्ग आ तू है जरा सी
1: तेरा दीदार याली अगेन दैट्स गैंगस्टर. So of course इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया इज गोना कीप मी कंपनी अंटिल आई लीव द स्टूडियो. सो वी गोना प्ले सम म्यूजिक हियर एंड आई हैव गॉट अ सरप्राइज फॉर यू. इफ यू स्टिल डोंट नो, आवारापन के गाने तो हम प्ले कर रहे हैं बट देयर इज अ वर्जन ऑफ द सॉन्ग कमिंग अप एंड आई विल लेट अमलनी टेल यू व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट. वी कम बैक इन जस्ट अ बिट.
3: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा.
0: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
5: School's starting soon and we need a car.
6: And books, uniforms, everything.
5: Don't worry, I found the best back-to-school red car offer on subdrive.ae. Drive cars, renting from just 1,098 a month. Rent it for 1-12 months and enjoy one flat rate.
7: And what if we need it for a short while?
5: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
8: Recalculating route to Sharaf DG for back to school shopping.
9: Parents, you heard that right. Win up to 5,000 dirhams back on laptops and tablets. Get gifts worth 500 dirhams and enjoy an extra 5% student and teacher discount. And that's not all. Save up to 200 dirhams with DIB, Al Hilal Bank, and HSBC. Power up for AI amplified learning. Shop in store or online. DNC Supply.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 36 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 33, ह्यूमिडिटी फिलहाल 57% पर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: एंड ये बिहाइंड द सीन बातें हम कर रहे हैं क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे लाइव हैं एंड ऑफ कोर्स इन द स्टूडियोज वी गॉट अमाल मलिक वी टॉकिंग अबाउट हिज म्यूजिक वी जस्ट प्लेड यू दिस गाना दैट आई एब्सोल्युटली लव इन फैक्ट मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये गाना बहुत पसंद है एंड यू वर टेलिंग अस कि ये गाना जो है यू डेडिकेटेड इट टू योर ग्रैंडफादर
1: It is a very very old story, but it's always like one night पहले ही बात की होगी मैंने इसके हर बार दोस्तों में बात होती है आपसे बात हो रही है जोएल बिल्कुल सब ने कहानी थोड़ी थोड़ी सुनी है but I was in my 9th or 10th grade and my grandfather was in his last stages of life and इसी का ही time पे dad I think my father, Mr. Dabu Malik, the creator of Thoda Sa Pyar Hua Hai, Thoda Hai Baki, as I introduce him. He is the best son. Hum log 1/4 bhi nahi hai. Even though everything that Arman and I do is for our parents. Mere papa jaisa koi beta nahi ho sakta. It's unbelievable. He, when my dada was in the ICU, he booked another bed in the ICU and stayed there for 6 months till he passed away. And... वहीं पे मिलते थे एंड दादा हैड आई थिंक पार्किंसंस अल्जाइमर्स ही वाज लूजिंग मेमोरी एंड में उन्हें याद कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे भूल रहे थे सबको भूल ही जाते ही कुड रिकॉग्नाइज ओनली हिज यंगेस्ट सन व्हिच इज डैड एंड ही रिमेंबर्ड मी एंड अरमान जस्ट दोज लास्ट 10 मिनट्स बिफोर टी हैपेंड ऑन द दैट लाइफ मशीन जो भी है बट दैट इज लाइफ व्हेन यू वांट टू डू समथिंग यू शुड डू इट नहीं तो फिर वक्त चले जाता पर मैं छोटा था उन्होंने हाथ पकड़ के डैड का बोला कि डब्बू आई हैव नेवर टोल्ड यू ऑल टू परस्यू म्यूजिक दैट मच बट यू ऑल डिड इट फॉर मी एज माय सन्स ही इज लाइक पर इन दोनों बच्चों को मेरा आशीर्वाद है एंड आई थिंक दे हैव व्हाट इट टेक्स एनीथिंग दो बॉयज नीड टू प्रोग्रेस इन म्यूजिक तू प्रॉमिस कर मुझसे तू हर चीज करे इनको सही म्यूजिक एजुकेशन देने एंड माय डैड वाज लाइक आपको लगता ही आल्सो डिडंट नो व्हाट द फादर इज सेइंग बिफोर गोइंग ही सेड नहीं इनमें है जो मैं जो मुझ में था एंड दैट्स हाउ एंड देन ही टोल्ड मी ही हेल्ड माय हैंड एंड बाकी सब तो हमारी फैमिली बायोपिक में आएगा जब हम करेंगे एक शो आफ्टर 10 इयर्स बट दैट इट्स अ मूवी व्हेन दैट मैन वाज होल्डिंग माय हैंड एंड ही सेड बेटा मेरा एक एल्बम रिलीज कर देना मैं तो जा रहा हूँ एंड मैंने बोला अनाज ले मुझे तो पता ही नहीं कैसे करना है आई जस्ट न्यू म्यूजिक सिटिंग्स देखी थी 14 इयर्स के बच्चे को थोड़ा पता था कि म्यूजिक प्रोडक्शन लैपटॉप इस पे होता है 9-10 स्टैंड आई वाज अ गैजेट फ्रीक बट देन आई डिड नॉट टू मेक अ सॉन्ग एंड गिव हिम आई मैं बनाऊंगा मैं बना हैड टीयर्स अरे हाँ दादाजी मैं बनाऊंगा आई विल डू इट एंड देन दम तोड़ दिया उन्होंने बहुत सालों बाद 23 की एज थी जब ये हो रहा था लाइफ में कि इंडी पॉप को मैं प्रमोट करना चाहता था व्हेन बॉलीवुड वाज एट इट्स प्राइम द लास्ट इंडी पॉप सुपर हिट्स वर तन्हा दिल बाय शान एंड सोनू जी एंड अदनान सामी दे हैड डन द लास्ट देयर वाज बाबा सहगल देयर वाज अलीशा चिनाय सोनू निगम अदनान सामी शान फिर बंद हो के बिन तेरे सनम चलने लग गया हर जगह इसलिए मैं पक चुका हूँ इन रीमिक्स इंडी पॉप में भी आ गया था विच इज फाइन बट एक वॉल्यूम की बात थी देयर वाज नो वन डूइंग ओरिजिनल गुड म्यूजिक एंड 12 इयर्स अगो व्हेन आई डेब्यूड उससे 2 साल पहले से वी वर ट्राइंग टू पिच म्यूजिक 2012 के सालों में जो मैंने काम किया है जो अपने माइंड से म्यूजिक बनाया विदाउट अ स्टोरी एंड स्क्रिप्ट वाज मैं रहो या ना रहो एंड चल वहाँ जाते सब जो रिलीज हुए इन 14 आई वाज वर्किंग एंड ट्राइंग टू मेक दिस थिंग्स 23 का मैं था दिस इज द ईयर अराउंड 2014 एंड 14-15 के आसपास एंड दिस मेलेडी आई थिंक मैं नहीं बना तो दादाजी बनाते और ऊपर से गॉड सेंड्स द मेलेडी टू दिस ह्यूमन बींग एंड ही डिलीवर्स इट ऑन अर्थ दैट्स हाउ आई बिलीव द प्रोसेस मैं गाने का डिलीवरी मानूँ बट बनता गया आसमानों में एंड उनका ही ब्लेसिंग है उनकी वजह से ऐसे नोट्स है सो देयर इज अ सॉन्ग आई एम टेकिंग लॉन्ग टू एक्सप्लेन दिस व्हिच आई वाज अ फैन ऑफ माय ग्रैंडफादर ही डेब्यूट इन 1951
0: ओके
1: दिस ईयर वी कंप्लीट 75 टू 76 इयर्स ऑफ द मलिक लेगेसी थ्रू हिम हिज सॉन्ग वाज द

0: बिना दिन कटते नहीं रहे, हो मैं
1: वाह,
0: रहूं या ना रहूं तुम मुझ में। सेम राग, यू नो, आई थिंक यमन इज द राग। आई डोंट नो मच अबाउट हिंदुस्तानी क्लासिकल, बट इन वेस्टर्न लैंग्वेज इट्स गॉट दोज एक्सीडेंटल नोट्स एंड इट्स अ वेरी वेस्टर्न प्लस इंडियन म्यूजिक का अच्छा बैलेंस। एंड बिग रिस्पेक्ट टू इमरान हाशमी एंड बिग लव टू ऑल हिज फैंस ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने यहाँ से हमारा एसोसिएशन शुरू हुआ। आई हैड नॉट डन बोल दो नज़ारा पहले। आई वेंट टू हिम, आई जस्ट समहाउ रीच्ड आउट एंड सेड कि ये गाना है, मैं अपने दादाजी को होमेज देना चाहता हूँ, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ही सेड येस, ईशा गुप्ता केम ऑन बोर्ड, देयर वर मेनी डायरेक्टर्स बीइंग ऑडिशन, बट आई हैड सीन अ गूगल एड विच अमित शर्मा हैड डायरेक्टेड, हु मेड द मूवी मैदान एंड हु मेड द फिल्म, वो कौन सी थी, दैट्स अ वेरी फनी मूवी, बधाई हो,
1: बधाई हो, यस,
0: क्रेजी मूवी। सो अमित शर्मा हैड मेड मैदान एंड बधाई हो, बट देयर इज अ गूगल एड विच शोज टू ओल्ड पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट कंट्रीज एंड दे मीट एट अ बॉर्डर, ऐसा था, बहुत इमोशनल, वन द बेस्ट नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट एड। उसको देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, आई वाज लाइक ये कौन है यार जो ऐसा इमोशन समझ रहा है। देन आई चेक्ड दैट आई हैड ऑलरेडी वर्कड विद देम एज अ प्रोडक्शन, व्हेन आई वाज एन एडवर्टाइजिंग म्यूजिक, मैं रेडियो जिंगल्स भी करता था बचपन में। तो आई समवेयर रीच्ड आउट टू अमित शर्मा ऑल्सो एंड सेड इमरान हाशमी इज ऑन बोर्ड, एंड इमरान हाशमी सर ने एक सेकेंड नहीं लगा, उन्होंने सिर्फ ये बात सुनी, मैं रो या ना रो तो मुझ में कहीं बाकी रहना, बस इतना है तुमसे कहना। रश्मि विराग के शब्द, अरमान मलिक की आवाज, और मैं बन गया आरजे अमल मलिक विद आरजे मानसी।
1: बट आई थिंक दैट वाज आल्सो अ ग्रेट पेयर टू सी अगेन, क्योंकि जन्नत में ईशा गुप्ता और उनको देखा
0: people,
1: था एंड वी मिस्ड देम फॉर अ व्हाइल एंड देन दैट वाज वीडियो ऑफ देम टुगेदर,
0: दैट वाज आल्सो इमरान हाशमीज ब्रेन वेव, ही सेड आई हैव नॉट कम बैक विद ईशा गुप्ता इन अ लॉन्ग टाइम, सो ही सेड शी इज अ स्वीटहार्ट एंड शी विल यू नो कम ऑन बोर्ड एंड शी डिड, शी इज आल्सो बिग लव टू ईशा गुप्ता फॉर,
1: शी इज वेरी स्वीट,
0: ऑल ऑफ देम made this happen for me and my grandfather.
1: So now coming back to 2026,
0: yes,
1: you've done another song for Imran Hashmi.
0: There
1: is a version of that song that we play, but all the Amalians, there is a version of that very song jo Amal ne gaya hai, and wo bahut jaldi aap sunenge right here on Big 106.2, but I want you to sing that live. Yes.
0: So all my fans, all my Amalians, आप लोग सबने तो ऑलरेडी एक गलती हो गई हमसे फिल्म मिक्स में, ओरिजिनल गाना गाया है हमारे चहीते, हु केम आउट एंड सैंग, ही केम आउट ऑफ हिज डेन एंड ही हैड लेफ्ट द म्यूजिक सीन, बट अरिजीत केम बैक फॉर मी एंड डिड वन सॉन्ग एंड आई थिंक इज रिटायर्ड अगेन आफ्टर दिस सॉन्ग, बट बिग लव टू अरिजीत ऑल्सो कि इतने बड़े डिसीजन लेने के बाद उसने दोस्ती निभाई। उसने ये गाना लास्ट ईयर ही सुन लिया था बिफोर आई वेंट इनटू अ रियलिटी शो,
1: ओके,
0: मैंने बनाया था, सो वी एक्सचेंज सॉन्ग्स एज फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स, तो इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, आई सेड सो कैन आई टेक दैट एज अ यस या नहीं, तो उसने कुछ बोला नहीं था, बट ही हैड सेंट मी ऑल हार्ट्स अबाउट द सॉन्ग एंड हाउ ही केम एंड डिलीवर्ड इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स, इवन इन हिज कैलेंडर जगह नहीं सांस लेने, एंड यूजली पीपल गो टू जियागंज, इवन आमिर खान एंड सच बिग, एड शीरन ऑल्सो हैड टू गो, and that's I'm not saying ki main koi VIP hu mere liye kar liya, but it's very difficult to find Arijit Singh in today's times, and he still stood up for me like a bro and sang this. So galti ye hui ki jo film mix engineer hai unka naam nahi lenge, kahin na kahin maine jo demo version gaya tha,
1: right,
0: and somewhere sung in a way, क्योंकि मेरी और अरिजीत की जो बैरिटोन लो वाली, हाई तो उनके जैसा कोई गा नहीं सकता, लो भी नहीं गा सकता, अरिजीत तो एक है, बट इट्स सिमिलर ग्रेन्स, तो यू सी द हुक लाइन ऑफ दिस सॉन्ग व्हिच इज ये, ये जो नोट है ना, वरपन, अरिजीत हैज द सिमिलर बेस लाइक मी देयर, सो फिल्म मिक्स इंजीनियर ने सिर्फ वो पार्ट चेक करके प्रिंट कर दिया, तो इंडिया में और आई थिंक इन द एशियन सब कॉन्टिनेंट अरिजीत की आवाज में है थिएटर्स में, दुबई में एंड वर्ल्ड में गलती से वो फिल्म शुरू होती है मेरी आवाज में, मैं खुद डर गया वो पिक्चर देख के, मेरे फैंस भी भेज रहे सर अरिजीत की वॉइस तो नहीं आपकी है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वन मिस्टेक अ लॉट ऑफ फाउंडर इवन टेक इट टू माय फैंस एंड इवन अरिजीत फैंस, कि बहुत सारे लोगों को ये लगा कि अमल ने गाने को अरिजीत सिंह की वजह से हाइप किया और फिर अपना वर्जन डाल दिया दुनिया में, जो भी एक सच्ची बात नहीं, वो एक टेक्निकल गलती हुई यार, दे डिडंट

0: बट माई बिग लव टू यू नो अरिजीत सिंह फैंस, एंड कोई आपको कुछ भी बोले, शेर आपके सामने खड़ा है, आपको यू कैन हियर इट फ्रॉम द लायंस माउथ, ही इज टेलिंग द ट्रूथ कि ये गलती टेक्निकल हो गई. बट ऐसा कुछ भी नहीं, अरिजीत ने एक कंडीशन रखी कि अमल का अगर वर्जन एल्बम में नहीं है मैं गाऊंगा ही नहीं, क्योंकि सो दैट्स हाउ माय वर्जन रिमेंड आल्सो. एंड ही सेड कि मुझसे ज्यादा दर्द लाया, ही इज लाइक मैं लाइफ में थोड़ा सॉर्टेड हो गया, आई एम लिविंग अ गुड मैरिड लाइफ, आई एम चिल, इट्स अ गुड वाइब, लाइक इसका दर्द कहीं जा रहा नहीं है, इसने जिस शिद्दत से गाया ना. So he fought with the labels and the producers with respect. Said I will do it, but if you promise to keep Amal's version, and that's coming now very soon. But wo theater se leak ho gaya hai, and mere fans ke paas hai, and they are streaming it on their own phones, download karke rakh liya. So this song is not about, this version is not about numbers. Every time now, I will try if it suits me. Ye gana pehle maine gaya, fir Arijit ne ise 6 se 7 baar gaya hai.
1: Wow.
0: और इतना एफर्ट दिया है, 6 to 7 टाइम्स फॉर एनीवन ऑन दैट लेवल. मैं मेहनत ऐसा करता हूँ, लड़ता हूँ अपने सिंगर्स, एंड ही अंडरस्टैंड्स द फाइट. अरमान एंड ही आर लाइक होमीज, बट आई इवन पुट अप अ फाइट विद सीनियर सिंगर्स विद रिस्पेक्ट, कि सोनू जी हो, श्रेया घोषाल हो, कि सर ऐसे करते, एक आपका टेक, एक मेरा टेक, एंड देन वील कंपाइल. एंड द मैन इज मेड हिस्ट्री टुडे, द सॉन्ग स्टैंड्स एट अ बिग नंबर, इट्स वन ऑफ द, इज द फर्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द आवर अपन टू एल्बम टू क्रॉस 100 million व्यूज, एंड it's in my top 10, like mere top 10 mein break in karna hai, mere khud ke gaane nahi break in ho rahe, because the legacy of what I have done is really big in terms of numbers, but nothing can beat the feeling of doing Bol Do Na Zara with Rashmi Virag, then Main Rahu Ya Na Rahu again with Rashmi Virag, dono gaane Arman ne gaye, and this time my hat trick with Imran Hashmi is with the one, the only Arijit Singh.
1: So we will play the version once it releases.
0: Yes.
1: क्योंकि हम ऐसे copy paste नहीं कर सकते. But दो line for all the fans here.
0: I forgot. I went into thoughts of how me and Arijit were recording the song. That's a BTS you'll never get.
1: Exclusive.
0: I'll start from the antra. It's my favorite part. जो कभी था शहर आज वीरान है,

0: मजा आ गया। अच्छा, जब आए थे हम आल इन 2021 तब एक गाना श्रेया घोषाल के साथ किया था, कट टू लाइफ इज अ फुल सर्किल। व्हेन वी कम बैक वी प्ले अ फन गेम विद हिम एंड
1: कैन वी प्ले दैट सॉन्ग आल्सो
0: एंड वी विल प्ले दैट
1: ओल्ड सॉन्ग आई केम फॉर
0: मेरा प्यार एक
1: तरफा, क्योंकि आज भी मेरा प्यार एक तरफा है लाइफ में म्यूजिक के साथ।
0: ऑन दिस नोट आई एम गोना प्ले यू अनदर सॉन्ग एंड देन वी कम बैक एंड वी टॉक अबाउट दिस ब्रांड न्यू गाना एंड अ फन गेम विद अमाल मलिक।
2: बिग 106.2 Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: इसी के साथ एक बड़ी अच्छी बात अभी
1: मिस कर दिया
0: आपने, बट प्लीज रिपीट टेक टू.
1: या आई एम सेइंग व्हेन यू डू अ रिक्रिएशन लाइक आजकल इतने हो रहे हैं एंड सिंस 2019 ही हो रहा है, इसलिए मेरा म्यूजिक और मैं थोड़ा कम ही देखते हैं. हम बैटमैन बन चुके हैं, वी बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ गुड म्यूजिक. सो व्हेन यू डू अ रिक्रिएशन और इफ आई डू, आई वांट एवरीवन टू ट्राई टू डू इट एज अ ट्रिब्यूट टू द ओरिजिनल. देयर वुड बी नो न्यू वर्जन विदाउट द ओरिजिनल बाय प्रीतम दा, यू नो. सो आमी जे तुम्हार इज हिज बेबी अगेन 2007. आई थिंक 2007 की सारी फिल्म्स मेरे पास ही आ रही है वापस. बट भूल भुलैया 3 इज बिगेस्ट सॉन्ग is Bhola Bhala by Sonu Ji and Aami Ji Tomar, the new 3.0 version by Shreya Ji, written by the legend Sameer. Possible nahi hota by anyone. 7, 8, 12, 15 composers I think ne try kiya and sabne bola nahi karna hame remake. Pritam da khud bol rahe the what to do in this, it's so iconic. And then he was supposed to do the entire soundtrack and then he couldn't. And that's how mixed music directors came. But no one wanted to touch Aami Je Tomar. They're like, ye gaane se dur rehte, bahut dangerous hai. But maine apne career mein hamesha jana gaya for romantic songs, electronic, EDM, Suraj Dubai, So Aasman, Kar Gayi Chul, Hero, Main Rahu Ya Na Rahu. But I was like, Indian classical ka bhi ek shade like, aur Rehman sir, ki kal agar koi Jodha Akbar jaisi film, ya Ajay Atul jaisi Sairat, aisi film mein banate, not on that level, a new kid trying new Indian music, I think I gave a tribute to their sound, to show, ki ye bhi mera ek style of music hai. Aur isliye main bolta hu ye line jo pehle aapne miss kar di, coming back and joining to the point, iski koi to wajah hai, jo zid pe adi hai ye dhadkane, कोई तो वजह है कि जिद पे अड़ी है ये धड़कने, यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें.
0: हाय हाय हाय हाय, किया जो किसी ने नहीं वो हम करेंगे, फिर से कर रहे हैं दोबारा. लाइफ इज अ फुल सर्कल. मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि कई बार ना कुछ चीज़ें घूम फिर के आती हैं. 2021 व्हेन ही केम टू द स्टूडियो, ही हैड अ सॉन्ग कमिंग अप. इनफैक्ट लॉन्च हो गया था गाना प्यार एक तरफा.
1: यस,
0: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाना. एंड आई थिंक नाउ यू डूइंग अनदर सॉन्ग.
1: I just released a few months ago and it's one of my biggest independent releases. It's the highest love, that not in terms of numbers, in the terms of the comments. And yani main manta hu ek gaane ke comments mein ek point ke baad na good song bad song irrelevant hota hai. Jab log apni kahani likhne lagte na, main 7th standard mein tha, ye hua mere saath, that's the kind of comments that usually comes on my music after a year. Ek romantic gaane ko obviously ek saal lagta hai and pop side pe there's no date. Like when we do a film song, wo release date pe hum tak hame kahi to pahunchna padta hai. Wo numbers ki thodi ek film side pe requirement hoti hai. I think music generally, romantic songs especially, and melodious and heartbreak songs, ये बहुत धीरे धीरे धीरे जहन में उतर जाते हैं, and then it becomes like नसों में उतर गया गाना. So I'm just happy, man. Good things happening for my music.
0: And they will keep happening because you are someone who's given us some brilliant music, and I think when I talk about the songs that we play, especially post 9, we have a thing called the Big Chill.
1: Nice.
0: So we have most of your music.
1: Yeah, I'm a late night bird myself. And I know that people like listening to my music at night in their own space also.
0: And people put stories. Jaise we were just talking about the song Main Rahu Ya Na Rahu and Chal Waha Jaate Hain. Log record karte hain kahin andheri sadkon pe chal rahe hote hain. Yahan to andheri sadkon
1: nahi hai. Kalai Kaat Aashik Hindustan mein bhi, UAE mein bhi.
0: Yahan pe bas
1: aashik. But hum ye promote nahi karte. Kalai mat kaato kisi ke liye bhi.
0: Yahan pe sirf aashik hai
1: aur aashik hi kar lo acche. Haan. Aashik 7 khud aapke samne khada hai.
0: But yahan pe ek tarfa nahi hai, multi तरफा फैले हुए आशिक है.
1: तो दुनिया आज की ऐसी मल्टी डायमेंशनल इश्क हो रहा है.
0: बट अब हम उस बात पे आएंगे जिससे हमारी बात की शुरुआत हुई थी, बिफोर आई लेट हिम गो एंड बिफोर आई लीव. सो ही वॉक्ड इनटू द स्टूडियो, ही आस्क्ड मी व्हेन इज योर बर्थडे. आई सेड इट्स मे 9th, आई एम अ टॉरस, एंड देन ही सेड आई एम अ जेमिनी, एंड आई मेड अ फेस. सो सॉलिड डिबेट. ओके मालिन्स, आई लव हिम, बट आई हैव समथिंग लाइक अ थ्योरी व्हिच आई फील, डोंट किल मी, दैट फ्यू Geminis are a red flag.
1: 80-90% of them, but I'm from the 10%. मैं कोई 100% green flag नहीं हूँ. कोई भी इंसान नहीं था जो जो ऐसा portray करते ना दुनिया में, ये सब साले झूठे हैं. लड़कियाँ भी लड़के भी, सच बता देता हूँ. It's not about gender. Equality की बात करें तो इंसान इंसान है भाई. अच्छा आपको लगे बुरा लगे, लोग मुझे दो तरीके से जानते हैं. जैसे Geminis are two-faced.
0: हाँ, मैं बोलने वाली.
1: I am I am four faced, 20 faced. How can you decide? I'm the mix of all the zodiacs. I think I'm a lion by heart and sher dili hai, jigra hai mujhme. So I resonate with Leo. I even have such a big tattoo on my back of a lion.
0: Why Leo?
1: I like lions. I think I sleep 16 hours when I'm not working. Every Monday, I sleep till 4 p.m. in the afternoon. Sunday is like, pehle jaise Dubai tha na, Sunday, Monday hota tha. So my format was Dubai wala pehle si tha. So I'm on that structure. Pe chalta hun. My Sunday is my most hard working day.
0: Okay.
1: Monday, I sleep for 12 hours. Kuch bhi ho, recording bhi nahi leta. So yeah, I chill like a lion. I get up and I dahad marta aur aa jata wapas. So I don't have a fake personality. If I was, I'd be caught by now.
0: But according to you, which zodiac is
1: compatible to me?
0: No. यहाँ पे सारे बिच बहुत सारे अलग zodiac होंगे. दिल नहीं तोड़ेंगे हम किसी का.
1: नहीं, मैं आपको सबकी चिट्ठा दे
0: देता हूँ. आप सारे zodiac date करें?
1: नहीं, मैं सबको काटता हूँ. मेरे तो तीन रिश्ते हुए लाइफ में. तीन बार के बाद मैं खुद को भी माफ नहीं करता. तीन गलतियों के बाद मैंने बोला अभी जो आएगी खुद ढूंढ गया है. हम कर रहे म्यूजिक. अपने पास टाइम नहीं है लड़कियों को मिलना भी, वक्त देना. जब तक आप नहीं दे सकते टू अ मैन और वुमेन टाइम इन अ रिलेशनशिप, उसमें मत आइए. व्हेन यू कैन डेडिकेट टाइम,
0: दो तरफा प्यार लगता है
1: बिल्कुल. एक ही आदमी मैं ही करते रहे, कोई और ही करते रहे, इट्स नॉट फेयर. वी लिव इन अ रियली फास्ट पेस्ड लाइफ. आई डोंट नो वेस्ट एनीवनस टाइम. भाई मैं बोलता हूँ आके एक बार, नॉट इवन लाइक अ लिव इन वाइब, कम एंड सी, पुट अ कैमरा एंड सी हाउ द मैन लिव्स. If you want to be part of that life, you'll take a decision in a week. आप झेल ही नहीं पाओगे मेरी जिंदगी. So सारी लड़कियों को मुबारक हो. मैं 80% ग्रीन फ्लैग हूँ, 20% रेड फ्लैग हो जाता हूँ. But Geminis are 80% red flags most of the times. And I would not say girls or boys. Both. They're crazy. They are chaotic, mercurial, पगले हैं. और उसी तरीके से लोग मुझे भी जज हो जाओ, जज मान लो, गुस्सा हो जाओ. आपका बर्थडे Gemini, मेरा भी है 16 जून. But they are mercurial. इधर चला मैं उधर चला, चलते रहता है.
0: जाने कहा मैं किधर चला और मैं बार बार फिसला. ये
1: जैसे बहुत है. आई थिंक आई एम इमोशनल एट माई कोर. माई कोर इज रियली इमोशनल. और जोडियाक के अलावा भी बहुत सारे बट एवरीवन, एवरी ह्यूमन बीइंग इज देयर जस्ट चेंजिंग बिकॉज द वर्ल्ड. आई टेल एवरीवन दिस, थोड़ा प्रीची हो रहा है. जिस दुनिया के लिए हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, बड़ा किया, वो दुनिया ही नहीं आज. The world they brought us up for, those emotions and those values don't freaking exist. तो क्या करें, आप zodiac से थोड़ी decide कर रहे हो. सबके experience से आप देखो ये red flag है, green flag है. आगे बचपन के trauma decide करते हैं आपका कितना green red है.
0: That is true.
1: But yeah, you're a Taurus, Cancerian. Joel, what are you?
0: He doesn't know.
1: ये क्या होता है, ये कौन सा है?
0: Man. I know zodiac. Which one?
1: October. What is that?
0: What is zodiac?
1: That is the month. What is your zodiac?
2: 23 days.
0: Libra.
2: Libra.
1: Are you drunk today, son? इतना लेयर्स में आंसर दिया, टाइम नहीं है मेरे पास.
0: He's Libra.
1: हाँ, सो लीब्रा इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड्स एज एयर साइंस. आविद मेरे से रिसर्च अच्छे. लॉकडाउन में बोर हो रहे थे, पढ़ ही लिया कि तीन रिश्ते क्यों नहीं चले पढ़ते.
0: सबने पढ़े.
1: या बट आई थिंक टॉरस पीपल आई रियली लाइक दैट दे हेड स्ट्रॉन्ग. जो दिल में उनके जुबान पे है बट वो दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हुए बोल देंगे. और जो कैंसेरियंस है, मेरी मम्मी कैंसेरियन है, इतना प्यार करेंगे आपको लगे कि भाई चोक हो गया आदमी, इतना दिल दे देते हैं. यू नो दे आर वेरी इमोशनल. जेमिनाइज डोंट लाइक टू बी कॉर्नर्ड. आई हैव दैट साइड.
0: दे नीड स्पेस.
1: बट ये सब जोड़िया हटाओ तो अगर अमल मलिक को जानना, उसका म्यूजिक सुनो.
0: आई
1: एम अ मैन नोन टू एवरीवन येट नो वन.
0: Absolutely a pleasure having you in the studio all बस over again.
1: 9 बज गए.
0: घर जाएंगे मतलब हम.
1: क्यों यार, अच्छी एसी चल रही है, मजा आ रहा है. फिर गर्मी में छोड़ दोगे मुझे बाहर?
0: नहीं, हम यहाँ बैठ सकते हैं, हम लाइव रह सकते हैं.
1: एक ड्यूएट हो जाए, तुम भी गाओ थोड़ा आज.
0: ब्रोंकाइटिस हो रहा है मुझे. गर्म पानी में पी रही
1: हूँ.
0: अस्थमा. हाँ, मेरा तो वैसे भी स्पीकर अभी फटा हुआ है गले का. बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर वर्जन ऑफ द सॉन्ग एंड कांट वेट फॉर यू टू कम बैक हियर अगेन. प्लीज इतना इंतजार ना कराएं, जल्दी जल्दी आए.
1: बिल्कुल, जाते जाते कोई ख्वाहिश है एवरीवन? मेरी तो
0: ख्वाहिश है बट आई थिंक हमें अभी प्रेफरेंस इंस्टाग्राम.
1: वी आर डन विद एनीथिंग एल्स. No,
0: I love प्यार एक तरफा.
1: जाके गाना this we can sing.
0: I love that song.
1: I can do a mashup of प्यार एक तरफा with Shreya and यही गुजार दूँ with Shreya जो किया है.
0: Done.
1: Let's do it. From 2021
0: to 2026.
1: Let's try. ये पहली बार कर रहा हूँ, मेरे भी माइंड को 30 seconds दो. Damn man, I really love प्यार एक तरफा. Very well written by Manoj Muntashir, the legend, जिनके साथ आज we are celebrating also 10 years of MS Dhoni the album. It's been 10 years today to jab tak from the MS Dhoni and the soundtrack. 25 saal ka bachcha tha main jab maine music kiya, pata nahi kaise hua. But pyar ek tarfa, फीचरिंग श्रेया घोषाल, रिटन बाय मनोज मुंतशिर, एंड यही गुजार दू अगेन श्रेया घोषाल विथ बी, रिटन बाय कुणाल वर्मा. लेट्स ट्राई द लाइव मैशअप. दुबई की पब्लिक दिल थाम के बैठी है.
0: पेश करते हैं. This is the very first time, by the way, he's doing this mashup. So exclusive content.
1: Na maine kuch kaha hai, na usne kuch suna hai. Ye khwab to akele meri aankhon ne buna hai. Tadap hai sirf meri, ghurur bas mera hai. नहीं वो इसमें शामिल, कसूर भी मेरा है, तो क्या

वो शाम आखरी यही गुजार दो. एंड दिस माय फेवरेट पार्ट, सॉरी जस्ट वांट टू सिंग दिस. मुझे याद है वो दिन आज भी, मैं चल के तेरे

Big 106.2, The Beat of Bollywood. Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Chill, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Listen to her every day.
1: Mugembo! Khush hua!
2: There's one thing that I absolutely love, and that is winters. Oof, oof, maza aane wala hai. Hi, Gaurav.
3: Yeah, hi.
2: How are you?
3: I'm Anti. All good.
2: ये कहाँ basement में बैठ के बात कर रहे हो?
3: नहीं बस ये building के corridor में आ गया था.
2: तो आप ऑफिस में अभी भी तो घर वालों से छुप छुपा के बात कर रहे हो?
3: जी किसी को बताऊंगा नहीं, अकेले अकेले जाऊंगा.
2: बहुत बढ़िया, वैसे भी अकेले ही ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा मोहल्ला जाएगा साथ. बट फिलहाल आपकी डीपी बड़ी अच्छी है, देख के लगता है यू आर इनटू रियल एस्टेट.
3: यस राइट.
2: तो आपको हमारी क्या जरूरत है यार, रियल एस्टेट वालों को तो इतना सॉलिड कमीशन मिलता है, वो तो हफ्ते में एक बार जर्मनी जा सकते हैं. मैंने सुना है गए हो पहले आप कभी जर्मनी?
3: नहीं जर्मनी नहीं, बट फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड एंड वन मोर थिंग इटली.
2: ये देखो मैं कह रही हूँ रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है फिलहाल. तो आपका गाना है कौन सा गाना है गौरव?
3: वो हसीना वो हिलम पड़ी, कर गई जैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली, हाँ दिल में बेचैनियां हैं भरी.
2: ना ना ना ना ना ना ना ना ना, हम तुम्हें ले जाएंगे होपफुली जर्मनी को. शॉर्टलिस्ट हो गए गौरव, कंग्रेचुलेशन.
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM. द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड. द बिग चिल, वेयर एवरी सॉन्ग फील्स लाइक अ डीप ब्रेथ आफ्टर अ लॉन्ग डे. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: कैच द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे फ्रॉम 3 to 6 PM विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। No rush, no noise, just soul-soothing music on a moonlit ride. This is the Big Chill on Big 106.2, the beat of Bollywood.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ

0: सुन छलिया
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Thank you.
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

Big 106.2, the beat of Bollywood.